FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 26 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंटसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण

0: गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जैसे को तैसा विषय पर विचार।
2: षठे षाठ्यम उक्ति के अनुसार जैसे को तैसा व्यवहार देना चाहिए। सत्य है कि यदि हम कोई व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो उसका अर्थ यही लगता है कि वो व्यवहार हमारे दृष्टि में उचित है और हमारे मनोनुकूल है। किंतु यदि वही व्यवहार स्वयं को प्राप्त होने पर हमको अच्छा नहीं लगता तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि वो व्यवहार दूसरे के साथ करते समय हमने ये ध्यान नहीं रखा कि उस व्यवहार से कोई व्यक्ति आहत हो सकता है, अर्थात हमने स्वयं में और दूसरे में भेद किया जो कि मनुष्यता की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि हमने जानबूझकर वो व्यवहार दूसरे के साथ किया, अर्थात दूसरे को हमने सायास दुख पहुंचाने का कार्य किया जो कि एक अपराध है। हम दूसरे को सुख पहुंचाकर स्वयं सुख प्राप्त तो कर सकते हैं किंतु दूसरों को दुख पहुंचाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यदि दूसरे को दुख पहुंचाकर हमें सुख प्राप्ति का अनुभव होता भी है तो इसका अर्थ है कि हम में मनुष्यता नहीं है बल्कि हम पाशविक हैं। कल्पना करें कि यदि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति पाशविकता का प्रदर्शन करने लगे तो क्या हमारा समाज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य रह जाएगा। षठे षाठ्यम उक्ति का दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि हम किसी व्यक्ति की प्रकृति से पूर्णतः परिचित हैं, यदि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति हमारे सद्व्यवहार का अनुचित लाभ लेगा और हमारा एक अनुचित व्यवहार उसके अनुचित व्यवहार को रोकने में सक्षम होगा तो हमारा उसके प्रति अनुचित व्यवहार भी अनुचित नहीं कहा जाएगा। अर्थात षठे षाठ्यम की उक्ति का प्रयोग करते हुए यदि हमारा एक अनुचित व्यवहार किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार करने की प्रकृति को परिवर्तित करता है तो हमारे अनुचित व्यवहार का उद्देश्य सत्कार्य के लिए कहा जाएगा। अतः षठे षाठ्यम के प्रयोग में विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना विचार किए यदि हम इस उक्ति का प्रयोग करते हैं तो परिणाम अशुभ भी हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई अपनी बातों से हमारे हृदय को दुख पहुंचाता है और हम प्रतिक्रिया स्वरूप उसके हृदय को दुख पहुंचा देते हैं तो ये क्रिया अनवरत चलती ही रह जाएगी और परिणाम दोनों ही के दुख के रूप में सामने आएगा। अतः दुख की क्रिया प्रतिक्रिया को रोककर प्रेम व्यवहार से एक दूसरे के हृदय को सुख पहुंचाने की चेष्टा करना मनुष्यता होगी और मनुष्यता की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आपने जैसे को तैसा विषय पर विचार सुने। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मोर मुकुट पीतांबर धारी, अधरों पर मुरली, राधा संग छवि जिनकी अति प्यारी है। माखन चुराकर सबका मन हर लेने वाले, सांवरे सलोने मनमोहक नंद नंदन के, जिन चरणों में सारा संसार बसता है, प्रातःकाल की इस पावन बेला में उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम है।

ये सारा संसार जिनकी शक्ति से संचालित है, जिनकी कृपा से हर प्राणी के प्राणों में स्पंदन है, ऐसे परम दयालु परम कृपालु प्रभु श्री राम के चरणों में हमारा प्रणाम है।

ईश्वर की कृपा और उदारता का कोई पार नहीं। ईश्वर हर उस हृदय की सुनते हैं जो पवित्र और निश्चल है। दूसरों को अपने समान मानने वाले, दूसरों की सेवा सहायता को सदा तत्पर रहने वाले मनुष्य को ईश्वर स्वयं मिल जाते हैं। उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता और प्रेम अद्भुत है। सुदामा जी के मुट्ठी भर चावलों में छिपे निश्चल प्रेम का ताप पाकर द्वारिकाधीश विह्वल हो जाते हैं। भक्त और भगवान की ये लीला अनोखी है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, अपने भक्त की पुकार सुन दौड़े चले आते हैं और उनका हर दुख हर लेते हैं।

हे ईश्वर, सुख हो या दुख, हमें सदा अपनी शरण में रखना। सत्कर्मों की राह पर हमें सदा चलाए रखना। लोभ मोह अहंकार दूर कर हमारे मन में अपनी भक्ति का दीप सदा जलाए रखना। हम अज्ञानी नादान आपकी चरणों की धूल हैं, हमें सदा अपने साथ रखना प्रभु, अपनी कृपा बरसाए रखना हम पर। आपसे हमारी यही विनती है।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, अनूप जलोटा, महेंद्र कपूर और शंकर महादेवन के स्वर में भक्ति वंदना सुनी। आपका दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आइए जानते हैं 16 मई की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। ये दिन वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। ये दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका उजागर करता है और समावेशी वैज्ञानिक विकास को समर्थन देने के साथ प्रकाश आधारित अनुसंधान अवसंरचनाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। श्रोताओं, आज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2017 में स्थापित इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सामुदायिक संवाद, संघर्ष समाधान और सामाजिक सामंजस्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ ही शांति, आपसी समझ और एकजुटता के प्रयास करना। ये दिन विश्व के विभिन्न देशों के बीच मतभेद और विविधता के बावजूद मानव समाज में सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हुए शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष की थीम है संवाद, समावेशन और मेल मिलाप के माध्यम से विश्वास निर्माण। और श्रोताओं, आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य डेंगू रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोग संचरण का मौसम आरंभ होने, विशेषकर मानसून से पहले देश में डेंगू रोग नियंत्रण के लिए निवारक उपाय अपनाना है। 16 मई वर्ष 2010 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और इस बार की डेंगू दिवस की थीम है एकजुट हों, कार्य करें और डेंगू को समाप्त करें। श्रोताओं, डेंगू रोग वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है जो एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर रुके हुए पानी में पनपता है। इस मच्छर के काटने पर अचानक तेज बुखार के साथ सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है और समय पर उपचार न मिल पाने पर रोग गंभीर हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता, जानकारी और स्वच्छता अपनाकर इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। श्रोताओं, आज देश का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। 16 मई वर्ष 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ था। और श्रोताओं, 16 मई विज्ञान के क्षेत्र में एक और उपलब्धि के रूप में भी दर्ज है। साल 2013 में इसी दिन वैज्ञानिकों को

पहली बार मानव भ्रूण के क्लोन से स्टेम सेल निकालने में सफलता मिली। चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक बड़ी सफलता थी और इसने कई लाइलाज बीमारियों के इलाज की दिशा में नई उम्मीद जगाई। हमारे देश का सैन्य इतिहास श्रोताओं अनेक वीर गाथाओं से भरा है। आज वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक कर्नल धर्मवीर सिंह का स्मृति दिवस है। उनका जन्म 10 जुलाई वर्ष 1910 को भिवानी हरियाणा में हुआ था। उन्होंने साल 1971 में राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लौंगेवाला पोस्ट पर हुए पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने कुशल नेतृत्व और सूझबूझ से इस हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के अदम्य साहस, शक्ति और पराक्रम के प्रतीक लौंगेवाला युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार हुई थी। श्रोताओं, कर्नल धर्मवीर सिंह ने अपने सेवाकाल में अपनी वीरता, साहस, पराक्रम, नेतृत्व और देश सेवा के लिए अनेक पद प्राप्त किए। सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2022 में आज ही के दिन उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। और श्रोताओं, आज आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष रचनाकारों में शामिल साहित्यकार मंगलेश डबराल की जयंती है। उनका जन्म 16 मई वर्ष 1948 को उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने हिंदी कविता को नए कलेवर से समृद्ध किया। उन्हें साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक कड़ी जोड़ने के श्रेय भी दिया जाता है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, लेखक की रोटी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार मंगलेश डबराल ने 9 दिसंबर वर्ष 2020 को इस दुनिया से विदा ले ली। और श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही संपन्न होती है आज की बात। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आप सभी को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आज बात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और लेजर तकनीक के महत्व पर। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने में प्रकाश किरणों का महत्व सर्वविदित है। सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही वातावरण में जीवन की हलचल आरंभ हो जाती है। अगर सूरज का प्रकाश न होता तो न दिन होता, न रात होती और ना ही जीवन की सुंदरता हमें दिखाई देती। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रकाश पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्राणवायु ऑक्सीजन निकलती है और वातावरण से हानिकारक गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। श्रोताओं, अंतरिक्ष विज्ञान में भी प्रकाश का विशेष महत्व है। खगोल विज्ञानी दूरबीन से प्रकाश का अध्ययन कर तारों, ग्रह नक्षत्रों और ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी प्रकाश पर ही आधारित है। इंटरनेट संचालित करने वाली फाइबर ऑप्टिक तकनीक में प्रकाश संकेतों के रूप में डेटा भेजा जाता है और इस तकनीक की मदद से ही मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और श्रोताओं, आज सूरज की रोशनी को सोलर एनर्जी में परिवर्तित कर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसका उपयोग पर्यावरण स्वच्छ रखने के साथ ही हानिकारक गैसों के प्रभाव को भी कम करता है। सोलर एनर्जी भविष्य का सबसे स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प है आज। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो प्रातःकाल सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। इस समय घूमने, टहलने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वातावरण में रोगाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करने में भी सूरज की रोशनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और श्रोताओं, भारतीय सनातन संस्कृति तो प्रकाश को ईश्वर का स्वरूप मानती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलो। और सूरज की रोशनी सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रकाश के महत्व को समझाने के लिए ही आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये दिन हमें समझाता है कि प्रकाश विज्ञान का विषय होने के साथ ही शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा, संचार और मानव विकास का भी आधार है। वर्ष 1960 में 16 मई के दिन महान वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने विश्व के समक्ष पहला सफल लेजर संचालन किया था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया बदल दी। श्रोताओं, लेजर का अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लेजर एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

0: जिसमें अत्यधिक तीव्र केंद्रित और एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। ये तकनीक विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रबंधन पर काम करती है। लेजर प्रकाश एक रंग का एक ही दिशा में जाने वाला और बहुत तीव्र होता है। लेजर तकनीक बल्ब जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से अलग होती है, क्योंकि इसमें प्रकाश फैलता नहीं और बहुत कम जगह पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है। इस तकनीक के कारण ही आज लेजर सर्जरी संभव हो पाई है। आंखों की रोशनी, हृदय की बंद नसों को खोलने, ट्यूमर, कैंसर के इलाज में लेजर आज बेहद कारगर है। इस तकनीक ने ऑपरेशन की जटिलताओं को काफ़ी कम कर दिया है। और श्रोताओं, चिकित्सा के साथ ही लेजर तकनीक आज सैन्य सुरक्षा, उद्योगों, संचार और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बारकोड स्कैनर, लेजर प्रिंटर जैसे उपकरणों में भी उपयोग की जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में लेजर की भूमिका और महत्व को देखते हुए कहा जाता है श्रोताओं, रोशनी है तभी जीवन है, और सूरज की रोशनी बनी रहे इसके लिए हमें अपने पर्यावरण पर ध्यान देना होगा, इसकी सुरक्षा और धरती की रक्षा के उपाय लगातार अपनाने होंगे। आज की विविधा में इतना ही। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, इसके बाद हिंदी में।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे UAE देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गेङ्गटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेङ्ग सिं तवाङ्गः, केन्द्रीय पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितान्

0: पुस्तिकानां उत्तर पुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिंब प्रतिबिंबित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतोवा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्री दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यति इति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी।

0: उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान पाठ का अगला प्रसंग। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत आप पुनः सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर। मध्याह्न 12:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम ऐपण में आज चर्चा होगी स्वस्थ शरीर के लिए फिटनेस विषय पर। साथ ही होगी पोषण की पाठशाला। इसी कार्यक्रम में आज मुनस्यारी के पारंपरिक व्यंजन विषय पर श्रीमती इंदिरा गनघरिया से दीपा जोशी की क्षेत्र संकलित बातचीत प्रसारित की जाएगी। रमेश उपाध्याय का लिखा नाटक अपने अपने दायरे आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। और दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री रविंद्र कुमार की वार्ता। विषय रहेगा मत्स्य पालन से स्वरोजगार और जल संरक्षण। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज की बात का विषय रहेगा सिक्किम राज्य स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। साथ ही होगा खेल जगत और जानेंगे आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनते हैं संध्या 5:45 पर, जिसमें आज चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांति के साथ सहप्रवास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, जिसका विषय होगा सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार। और वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पांडे। अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल की गायी भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत कार्यक्रम में संध्या 6:41 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 7 बजे आज की बातें क्रम में जानेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट और गहत की खेती के बारे में। चर्चा होगी मृदा की जांच क्यों करवानी चाहिए इस विषय पर। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे

कृषि में जैविक खादों का प्रयोग विषय पर कृषक विपिन चंद्र तिवारी से कृष्णा लटवाल की भेंटवार्ता। हमारे केंद्र से कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में, दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीतों में और संध्या 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में। सुगम संगीत सुनिएगा पूर्वाहन 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर और रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सबरस। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:05 पर गीत निर्झर कार्यक्रम में, पूर्वाहन 10:35 पर सुरबहार, 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम, मध्याह्न 12 बजे मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत, संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान पाठ से 95वां प्रसंग। गायक हैं भूपेंद्र सिंह और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ का 95वां भाग। गायक थे भूपेंद्र सिंह और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर नई कार्य योजना लागू की। सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत कारपोलिंग और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का करीब 70% कार्य पूरा। अब तक 19 लाख घरों और 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित किया गया। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60% करने को मंजूरी दी। और उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर राज्य भर में व्यापक कार्य योजना लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी विभागों, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।
1: जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा और अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता देने और अनावश्यक भौतिक बैठकों को सीमित करने को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान चलाया जाएगा। वहीं मेड इन उत्तराखंड अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और सौर ऊर्जा, पीएनजी, बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संजीव कंडवाल।
0: इस बीच सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आज का दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग ने प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन तथा साइकिल जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है। श्री तिवारी ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक

बदलाव ला सकते हैं और इससे ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती मिलेगी। नो व्हीकल डे के माध्यम से ईंधन की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई कदम उठा चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में कटौती जैसे उपाय भी शामिल है। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य करीब 70% काम पूरा हो चुका है। अब तक जनगणना टीम 19 लाख घरों तक पहुंचकर लगभग 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित कर चुकी है। भारत के

0: नारायण ने प्रमुख सचिव आर के सुधांशु के साथ वर्चुअल बैठक कर जनगणना कार्य की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों से प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि शेष 10 दिनों में निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। बैठक में जनगणना आयुक्त ने कहा कि आंकड़ों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की योजनाएं और परिसीमन तय होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसे प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। राज्य में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में उद्योग प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ श्रमिक हित और औद्योगिक शांति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें और श्रमिकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुनर्व्यापक स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को तय मानकों के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिल सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर 58% से बढ़ाकर 60% प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 50 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इसमें पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़े कई कार्य शामिल है। स्वीकृत योजनाओं में हल्द्वानी फायर स्टेशन में आवास निर्माण, चंपावत जिले में पुलिस आवास निर्माण, अल्मोड़ा और चमोली में पार्किंग निर्माण जैसे कार्यों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: पुलिस के अनुसार अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट में 40 और गुंडा एक्ट में 130 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्य भर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाकर 66 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। वहीं उधम सिंह नगर और देहरादून में आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों को भी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान 40,000 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया, जबकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 15,000 से अधिक वाहनों के चालान और 2,000 से अधिक वाहन सीज किए गए। होटल, बार, पब और ढाबों की सघन जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर 1,200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगी रोकने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया लिंक ब्लॉक किए और 50 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद कराए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर मंथन किया गया, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण खबर में लिखता है प्रदेश सरकार और संगठन विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा पेश करेंगे। नीट यूजी की रद्द परीक्षा पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है 21 जून को दोबारा होगा पेपर, अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में

3 रुपए की वृद्धि, हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है ईरान अमेरिका में जारी जंग के चलते दाम में हुई बढ़ोतरी। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की भीड़, अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है चारों धामों में एक दिन में औसतन 70,000 से 80,000 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। और देहरादून में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 25 करोड़ रुपए की ठगी, दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है 5 से 10% मासिक मुनाफे का झांसा देकर लोगों से जुटाए गए करोड़ों रुपए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर नई कार्य योजना लागू की। सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत कारपोलिंग और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का करीब 70% कार्य पूरा, अब तक 19 लाख घरों और 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित किया गया। सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% करने को मंजूरी दी। उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1,400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं मनोज कुमार के स्वर में ये देवी गीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं मनोज कुमार के स्वर में ये देशभक्ति गीत।
2: बलिदान करूँ ला, बलिदान करूँ ला।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मनोज कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से। कार्यक्रम है लोक मंजरी।

0: star-rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मनोज कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।
3: स्वामी मेरा

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम

0: का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरीज खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विनायक थाना थल जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय हरगोविंद दिनांक 20 अप्रैल सन 2026 से ग्राम गोखरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता हैं। उनका कद 5 फीट, इखरा शरीर, चेहरे का रंग गेहुआ है। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज, नीली साड़ी, गले में माला और हवाई चप्पल पहने थीं। इनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई।

0: मनोज कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों

0: में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में

0: आज स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में गाया ख्याल। विलंबित ख्याल एक रूपक ताल में निबद्ध है। बोल हैं डमरू हरकर बाजे। द्रुत की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं मितवा गुरु चरणन। आपके साथ तबला संगत करता है नंद किशोर मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप पंडित नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में गाया ख्याल सुन रहे थे। आपके साथ तबला संगत की थी नंदकिशोर मिश्रा ने।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुई। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा है। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों के दूसरे दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। हेग में प्रधानमंत्री का प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ भव्य स्वागत किया गया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। नीदरलैंड्स का दौरा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई है। CBSE ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता और

0: सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया की जोड़ी से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारी जिंदगी से जुड़ा हर रिश्ता अनमोल होता है। इन रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, मगर हमारी जिंदगी में इन रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। इसलिए दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, क्योंकि

संगीत की फरमाइश हमारे पास आई थी भाटापारा दतरंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज, अमान, माही, नीलोफर, शन्नो, शब्बूर की। और इसी गीत को सुनना चाहा था मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, महाराजा रेडियो श्रोता संघ ज़िला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, और नाज मंजिल महसौल सीतामणी बिहार से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, पुत्र वसीम अकरम इनके, और रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा सुमैरा, अबीहा, शाहीन, साजिया, नाजिया, नूरनाज, बच्चू शेख और चीना शेख ने।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था वापस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे मैजरूह और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: गीत निर्झर कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा, पूजा परिहार। और रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। आप सभी ने सुनना चाहा है यस बॉस फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश आपके लिए।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति
3: गांधी रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख मोहम्मद अजीम शेख मोहम्मद जावेद शेख मरियम फातिमा मुन्ने सलमानी एम के शेख जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव शौर्य नामदेव तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत ममता रावत और वान्या गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु और रिधान खुराना। आप सभी ने सुनना चाहा है अनोखा अंदाज फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं

0: कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, हिंदी और बांग्ला सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्देशक फणी मजूमदार की पुण्यतिथि है आज। उन्हें उनकी बहुचर्चित फिल्म स्ट्रीट सिंगर और इसके लोकगीत बाबुल मोरा नहर छूटो जाए के लिए आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा फिल्म आरती और ऊंचे लोग जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ विदेशी सिनेमा में भी काम किया। कन्यादान, आकाशदीप, बदलते रिश्ते, आरती, गूंज, तमाशा उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी फिल्म आकाशदीप का गीत सुनवाने का अनुरोध हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहारकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से परिणीता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर, कुमारी ध्वनि गवहाणकर, परी मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गोकुल चौक गंगजला, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम रानी, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विनायक थाना थल जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय हरगोविंद दिनांक 20 अप्रैल सन 2026 से ग्राम गोखरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता हैं। उनका कद 5 फीट, इखरा शरीर और चेहरे का रंग गेहुआ है। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज, नीली साड़ी, गले में माला और हवाई चप्पल पहनी थीं। इनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत हमने लिया था आरती फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी फुटानी चौक नरहन इस्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और मीरा सिन्हा की। इसी गीत को सुनना चाहा था मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनेतपुरी की। इसी गीत की फरमाइश एक और हमारे पास आई है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन और नांस मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा और गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गीत निर्झर कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है साया फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर साह, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी, हिना कौसर, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की। आप सभी ने सुनना चाहा है साया फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश आपके लिए।

सनावत से शेख मूसा बानोबी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता भाटिया, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा ये सब हमारे श्रोता हैं। गुमला झारखंड से छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले दुखना सदफ, जूही इकबाल इमरान अहमद फूलवाले कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन बागवान आसमा परी राबिया और आशु अहमद फूलवाले, और गांव चौहल्लदा बागपत से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपार ढिंगिया। आप सब ने सुनना चाहा है रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। तो लीजिए पेश है आप सब का गीत आपके लिए।

ये फिल्म नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हिना, सकीला, जासमीन, राजिया, सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज मोहम्मद, जावेद अंसारी और नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। इसी गीत को सुनना चाहा है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र सिंह बिजारनिया, राजपाल सिंह बिजारनिया, अभिषेक बिजारनिया, योगेश बिजारनिया, पूजा बिजारनिया, आरजू बिजारनिया, नव्या बिजारनिया। ये सब श्रोता हैं हमारे गांव खारियां ढाणी ज़िला सिरसा हरियाणा से, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा, बड़ा बाम्बो सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेंद्र, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द राहुल, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दीशानी और निमित आहूजा, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख समा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज शेख और बेबी मुस्कान, और सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, और इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है आया सावन झूम के फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इसी गीत को सुनना चाहा था जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, लाल माता सुदामा नगर रतलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए आया सावन झूम के फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के

अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रूना लैला के गाए इस नगमे के साथ।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए पयाम सईदी का कलाम। फनकार हैं अनुराधा पौडवाल।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबरंग कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

बाद बैठक के दौरान प्रदेश में श्रमिक हितों के संरक्षण के साथ ही औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने सभी पक्षों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग संस्थान श्रमिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, साथ ही औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों से नियमित संवाद स्थापित करें। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापक स्क्रीनिंग कर ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को मानक के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त हो रही है, साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित भी की जाए। श्रम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम वेतन की तुलना में उत्तराखंड का वेतनमान अपेक्षाकृत बेहतर है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,800 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,100 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 16,900 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित है, जो कि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है। विभाग ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए श्रमिक अपने संबंधित सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हल्द्वानी स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कार्यरत रहने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0594628280 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58% प्रतिमाह से बढ़ाकर 60% किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने अल्मोड़ा के मोलेखाल बाजार में पार्किंग के निर्माण के लिए 5.91 करोड़ तथा चमोली स्थित ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग के लिए 61.57 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया। वर्तमान वैश्विक संकट को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आज शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मना रहा है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहन या साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और ये पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रदेश में आगामी 29 मई से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में सभी से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर SIR प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके लिए आगामी 8 जून से 7 जुलाई तक BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन किया जाएगा। इसी आधार पर 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन करने के बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नैनीताल पुलिस ने कैचीधाम, भवाली, भीमताल और हल्द्वानी काठ गोदाम क्षेत्र में साप्ताहांत के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए शनिवार 16 और रविवार 17 मई के लिए विशेष यातायात और डायवर्जन योजना लागू की है। ये व्यवस्था प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगी, जबकि यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने पर्यटकों, वाहन स्वामी और आम जनता से निर्धारित यातायात योजना का पालन करने की अपील की है। गोपेश्वर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

तलत अजीज की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। अब आप हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। दोस्तों, सुर बहार कार्यक्रम में आज बात एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज़ का जादू सुनने वालों को भाव विभोर कर देता है, जिनके गीतों से हर इंसान के दिल की कहानी जुड़ी है और जिनकी गायकी का हर अंदाज रूह में समा जाता है। आज हम लेकर आए हैं सुरों के बेताज बादशाह, शहनशाह तरन्नुम, पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की बेमिसाल गायकी से सजे चंद सुरीले नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उनकी सुरीली आवाज़ में, जिसे हमने लिया है कन्यादान फिल्म से।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए सुरीले चंद गीत। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में समाई सुरों की खनक को अल्फाज देना मुश्किल है। उनकी गायकी का हर अंदाज निराला था। उनकी गायकी में जज्बातों की एक पूरी दुनिया बसती थी। रफ़ी साहब जब ऊंचे सुर लगाते तो लगता जैसे आसमान भी सुनने के लिए ठहर गया हो, और जब वो धीमे सुर में गाते तो दिल की धड़कन भी महसूस होने लगती थी। उनकी मीठी सुरीली मखमली रूहानी आवाज़ से सजे मोहब्बत के तराने, दर्द भरे नगमे, देशभक्ति गीत, भजन, कव्वालियाँ बेमिसाल हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सूरज फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today.
2: दोस्तों, रफ़ी साहब की गायकी में इंसानी जज्बात की एक पूरी दुनिया बसती है। उनके गीत सुनकर लगता है जैसे अपना ही कोई दर्द, कोई कहानी सुरों में पिरो दी गई हो। उनके गीत कभी माँ की लोरी बन सहलाते हैं, कभी आंसू बन दिल का दर्द बहा देते हैं, कभी तन्हा राहों के साथी बन जाते हैं और कभी जिंदगी का फलसफा बन हिम्मत दे जाते हैं जीने की। आइए सुनते हैं उनकी रूहानी आवाज़ से सजा हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत। अख्तर रोमानी के बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और ये गीत सजा है मोहम्मद रफ़ी साहब की रूहानी आवाज़ से।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों में समाई रूहानी गर्माहट में बसा सुकून लाखों दिलों का सहारा बना। कभी जख्मों का मरहम बना और कभी प्यार का तराना बन उम्मीद की शमा जला गया। रफ़ी साहब की गायकी में इतनी पाकीज़गी है कि हर उम्र का इंसान इन गीतों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। उन्होंने दिल के अनकहे अल्फाजों को आवाज़ देकर लाखों दिलों के जज्बात अमर कर दिए। वो जब गाते तो पूरी तरह सुरों की दुनिया में डूब जाते थे। उनका हर गीत अमर है, सदाबहार है। आइए सुनते हैं उनकी जादुई आवाज से सजा एक और अनोखा अंदाज। फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा।

दोस्तों, सदियां बीत जाती हैं मगर कुछ आवाज़ों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। सुरों के सरताज रफ़ी साहब की बेमिसाल गायकी से सजे सुरीले सदाबहार नगमे, उनके अमर गीत और इन गीतों के जरिए रफ़ी साहब की अमर गायकी हमारे दिलों में बसी है और सदा बसी रहेगी। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए दोस्ती फिल्म के इस गीत के साथ ही सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। एफ एम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत हमने लिया था लीडर फिल्म से। शकील बदायूनी के बोलों को संगीत से सजाया था नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है हरिहरन, घनश्याम और संतोष की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं रोजा फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में। पीके मिश्रा के बोलों को संगीत से सजाया है एआर रहमान ने और फिल्म का नाम है रोजा।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं फना फिल्म का गीत। शान और कैलाश खेर की आवाज़ में, गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार जतिन ललित।

आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं माचिस फिल्म का गीत। हरिहरन और सुरेश वाडकर की आवाज़ में गीतकार गुलजार और संगीतकार हैं विशाल।

सैनिक भाइयों, हरिहरन और सुरेश वाडकर की गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी का राग जौनपुरी में गाया ख्याल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं आस लगी मोरे मन। द्रुत की बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं मोरे कान झनकना पड़ी। आपके साथ तबला संगत की है कुमार लाल मिश्रा ने, सारंगी पर बच्चा लाल मिश्रा और तानपुरा पर सुनील ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वेदुषी गिरिजा देवी का गाया राग जौनपुरी में ख्याल। तबला संगत करता थे कुमारलाल मिश्रा और सारंगी पर साथ दिया था बच्चा लाल मिश्रा ने। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुपांक्ति का स्नेहिल नमस्कार और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत मेरी पसंद में। श्रोताओं, कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो सफलता की ऊंचाइयों को छूना आसान हो जाता है। किस्मत आपके लिए कब दरवाजा खोल दे कोई नहीं जानता, इसीलिए काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ ऐसी ही सीख हमें जिंदगी देती है। खूब मेहनत, प्रयास, समर्पण एक ना एक दिन सफलता की राहें खोल ही देती हैं। अपने अभिनय की विलक्षण प्रतिभा संपन्न ऐसे ही एक अभिनेता हैं विक्की कौशल, जिन्होंने फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाकर शुरुआत की और आज अपना ही एक खुला आकाश उन्होंने तराशा है और अपनी विविध भूमिकाओं के जरिए वो हर दर्शकों के दिलों में राज करते हैं। और आज विक्की कौशल को हम खास तौर पर याद

कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो आज विक्की कौशल को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अपने कार्यक्रम की ओर से। और आज उन्हीं पर अभिनीत फिल्मों के चुनिंदा खूबसूरत नगमों से सजा है हमारा आज का मेरी पसंद।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित।

0: মেচারি।
1: तो श्रोतों, आज मेरी पसंद में हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल की। आज है उनका जन्मदिन। और बता दें आपको कि 16 मई 1988 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ विक्की कौशल का। वो फिल्मी घराने से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में उनका संघर्ष किसी आउटसाइडर से कम नहीं है। विक्की कौशल बॉलीवुड के दिग्गज एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम वीना कौशल है। परिवार में विक्की कौशल का एक भाई सनी कौशल भी है, जो कि खुद एक एक्टर है। और यूं तो विक्की कौशल का परिवार पंजाबी है, और उनका जो पैतृक मूल पंजाब के होशियारपुर में, वहाँ के वो रहने वाले हैं। और उनकी पढ़ाई की बात करें तो विक्की कौशल के पिता चाहते थे कि उनका बेटा शो बिजनेस से दूर रहे और एक सामान्य लेकिन स्टेबल करियर बनाए। इसीलिए विक्की ने साल 2009 में मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही विक्की एक इंडस्ट्रियल टूर पर गए थे, और वहाँ उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऑफिस की नौकरी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। और यहीं उनके दिल से आवाज़ आई कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाए, और शुरू हुआ उनका ये संघर्ष।

तो शुद्धांश के बाद विक्की कौशल ने किशोर नमित कपूर की एकेडमी में बतौर एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही वो ट्रेनिंग के अलावा एक्टर मानव कौल के अरण्य ग्रुप और नसीरुद्दीन शाह के मोटली प्रोडक्शंस के साथ थिएटर भी करने लगे और वो थिएटर में बैक स्टेज काम करते थे। अनाउंसमेंट से लेकर स्टैंड इन तक हर तरह के काम विक्की पूरी निपुणता के साथ करते। इसी तरह उन्होंने लगभग 2 साल तक खूब सारे ऑडिशंस भी दिए लेकिन उन्हें कोई खास अच्छा मौका नहीं मिला। बतौर एक्टर विक्की ने पहला प्रयास 2011 में लाल पेंसिल नाम के एक थिएटर से किया था और सिल्वर

स्क्रीन की बात करें तो विक्की कौशल का पहला राबता असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हुआ। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में वो अनुराग कश्यप के सहायक निर्देशक बने और विक्की खुद अपने साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप के साथ काम करना उनके लिए फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी पाठशाला साबित हुई और वो अनुराग कश्यप को अपना गुरु मानते हैं। और विक्की कौशल को पहला ब्रेक भी अनुराग कश्यप ने ही दिया था। विक्की कौशल ने अनुराग के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लव शब्द चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट 2012 में लव शब्द चिकन खुराना 2015 में बॉम्बे वेलवेट और इन फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए। इसके अलावा वो शॉर्ट फिल्म गीक आउट 2013 में ये प्रदर्शित हुई थी, इसमें भी उन्होंने एक छोटी भूमिका की थी।

तो ये एक सफ़र था उनके ज़िंदगी की शुरुआती दौर का। बतौर लीड एक्टर विक्की कौशल की डेब्यू फिल्म थी 2015 में प्रदर्शित हुई फिल्म मसान। डायरेक्टर नीरज घायवान की इस फिल्म में दीपक के किरदार में विक्की कौशल ने जान फूंक दी। मज़ेदार बात यह भी है कि विक्की कौशल और नीरज दोनों ही गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मसान पहले राजकुमार राव को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके पीछे हटने के बाद नीरज ने ऑडिशन लिया और विक्की को चुना। मसान को समीक्षकों का खूब सारा प्यार मिला। विक्की कौशल ने फिल्म में बनारस की गलियों और काशी के घाट पर वाकई समा बांध दिया। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में दिखाया गया और जहां इसने दो पुरस्कार भी प्राप्त

जी हाँ, मैदान फतह करने को बिल्कुल तैयार थे इसी साल विकी कौशल। उनकी बेहद चर्चित फिल्में इस साल आईं, जैसे मनमर्जियां और राजी।

0: फिर आया श्रोताओं 2019 और इस साल डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म ने विक्की कौशल को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में एक सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने बेजोड़ एक्टिंग की और ये साल 2016 के उरी हमले पर आधारित फिल्म थी जिसके लिए विक्की कौशल ने खूब मेहनत की और उनके अभिनय को बेहद सराहा गया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। विक्की को इसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
1: कांधे पे सूरज

फिर साल 2021 भी विक्की कौशल के लिए बेहद लकी साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल उनका विवाह हुआ कैटरीना कैफ से। और उनकी इस विवाह के बाद उन्होंने कई और भी फिल्मों में काम किया। बहरहाल उनके लिए एक गाना हम उन्हीं के फिल्म से सुन लेते हैं।

तो श्रोताओं, विकी कौशल की फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है। बेहद चर्चित फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मसान जुबान, रवन राघव 2.0, लव पर स्क्वायर फुट, राजी, लस्ट स्टोरीज, संजू, मनमर्जियां, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, भूत पार्ट वन, द हॉन्टेड शिप, सरदार उधम सिंह, गोविंदा मेरा नाम, जरा हटके जरा बचके, द ग्रेट इंडियन फैमिली, सैम बहादुर, डंकी, बैड न्यूज़ और छावा जैसे फिल्मों में उनके अभिनय का दमखम देखने को मिला।

तो श्रोताओं, विकी कौशल ने तरह तरह के किरदार निभाए हैं फिल्मों में, जिनके ज़रिए वो दर्शकों के बीच बेहद चहेते कलाकार माने जाते हैं।

तो शुद्धों आने वाले समय में विक्की कौशल और भी कई नई नई फिल्मों में विविध किरदारों के जरिए अपनी एक्टिंग के जरिए हमें खूब एंटरटेन करते रहेंगी। हम उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देते हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज उनके जन्मदिन पर एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का मेरी पसंद यहीं तक अंजुबांग।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

एपर कार्यक्रम सुने सभा श्रोता दंगलियन के मैं दीपा जोशी के नमस्कार स्वागत आप सब लोगों ने आज के अपन कार्यक्रम में दंगड़ी रोजा के चारे कुछ बातचीत आप लोगों ने करूँ कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ और दंगड़ में करूँ आप लोगों को भरपूर मनोरंजन। तो कार्यक्रम में पछा तक हमारा दंगड़ बढ़ी रहा। दंगड़ी आज का दिन हम सब महिलाओं के लिए खास छू क्योंकि आज हम करण लाग रही वर्षा बीती बढ़ते आज हमारे इलाके में और बहुत सा जागरण में हमारे कतु कद घड़ी ये वर्षावितिक वर्त करण लाग रही। ये वर्षावितिक वर्त कहें सुहागक वर्त मानी जाच और सुहागन महिलाएं अपर सुहागक लंबी उम्र अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ये वर्त कहें धानी और ये में बरगदक पेड़ यानी बट वृक्ष पूज करनी और सावित्री देवी पूज कर भी सत्यवान सावित्री रहो अखंड सुहाग रहो घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ी रहो यही हमारे कार्यक्रम में तरफ बटी आप लोगों के शुभकामनाएं छह।

0: गोकुल निष्ठा और हृदय गणित योग्यता पर लोगों ने सुनो। स्वस्थ शरीर रख लीजिए, फिटनेस बहुत जरूरी छो। कहना बिल्कुल सही कह रखो कि पैर सुख निरोगी खाया। जब हमारा शरीर हमारा आंग स्वस्थ रुचो तो हम खुश रहनु और हर काम के भले के मन लगबे करनु। और जब हम काम का मन लगबे करनु तो वो काम बड़े रंगल हो। तो अपन आंग के अपन शरीर के स्वस्थ निरोगी धारण रख लीजिए। हमन के कुछ बातों का ध्यान धारण बहुत जरूरी हो, जैसे कि नियमित व्यायाम करण, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद, तनाव मुक्त रूप और आराम, ये सब बहुत जरूरी छ शरीर के स्वस्थ रहने के लिए। शारीरिक और मानसिक रूप से हम तब स्वस्थ रह सकूँ जब यू सब बातों के अपन दिनचर्या में हम शामिल कर लूँ। देखो यू स्वस्थ शरीर रख लीजिए, फिटनेस का कुछ उपायों के हम अपने सकनू। यह मैं नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे कि रोज तेज हटन, तैरन या साइकिल चलून और हमारे शरीर रख लीजिए बहुत फायदेमंद हो। योग व्यायाम ले हमन के जरूर करना चाहिए। संतुलित आहार ले अपन खान में हमन के शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए जरूरी छू। तो अपन खान में हमन के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन के जरूर शामिल करना चाहिए और ज़्यादा है ज़्यादा कोशिश करो कि घर बड़ी हुई पौष्टिक खाना खाए जाओ। भैरक खाना है हमन के बचन चाहिए। दगड़े अपन जीवन शैली में सुधार लो जरूरी छू। रोज 7-8 घंटा भल नींद लियो जैल शरीर के आराम मिल। दगड़े दिन भर में पर्याप्त पानी लें जरूर छू। बहुत से लोग ये करने की पानी कम पीने तो पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं हो जाए। देखो फिट रोना कीजिए कदू का फिट रोना कदू का फैद हमन के होनी। स्वस्थ रोना दगल हम स्वस्थ तो रोनू, स्वस्थ रोना दगल दगल यहल हमारे वजन नियंत्रित रोज, ज़्यादा वजन नहीं बढ़न, मोटापा नहीं हो और कतु का बीमारियों है हम बच जानू, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मनोविह खतरे में ले कम करो, हम स्वस्थ रहो। ऊर्जा में वृद्धि है, शारीरिक गतिविधि, मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़े। फिट रोनल हमारे मानसिक स्वास्थ्य लय बहुत रोज, तनाव कम हो और हम खुश रहो। निगड़ियों तो हम यही चाहूँ कि हमारे सदा श्रोता दगड़ी अपन शरीर के फिट धरना लीजिए, फिटनेस का ध्यान धरो और हमेशा खुश रहो, निरोगी रहो और स्वस्थ रहो।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और देवरियो अब आप हम आप लोगों के लिए चीज ले भी आ रही हैं। एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता आज शनिवार छो और आज हम पोषण की पाठशाला अंतर्गत आपको सुनो लागनी। मुंसारी के पारंपरिक व्यंजन विषय पर श्रीमती इंदिरा गनघरिया जी द्वारा करी गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। आज जो शनिवार और आज हम आप लोगों ने जिलेबी रोनू पोषण की पाठशाला, आज हम आप लोगों ने अगर बात करने लग रही हूँ मुंसारी कुछ पारंपरिक व्यंजनों के बारे में। तो यही बारे में ज़्यादा जानकारी पाना के लिए हमूल भेंट करी श्रीमती इंदिरा घनघरिया जुदगढ़। दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत छो हमारे कार्यक्रम अपन में।
3: धन्यवाद
0: दीदी। आपको मूल रूप में कहाँ भया?
3: मूल रूप में हम मुंसारी के भया।
0: तो मुंसारी के बारे में कुछ बताओ।
3: हाँ दीपा, मुंसारी तो हमारे बहुत भल बढ़िया जग छो और बाहर में विदेशी लोग पर्यटक बहुत उन्हीं वहाँ मुंसारी में।

0: और हो ये तो भल मौसम है रो गर्मी में सब वहाँ मुंशहर में आरोनी वहाँ तो के बहुत भल जाग छु मुंशहर
1: बिल्कुल
0: देखने में बहुत बढ़िया घूमने फिरने लीजिए तो बहुत बड़ी छु और ठंडी ठंडी हवा ठंडो पानी पूरे हिमालय भुग्याल दिखी वहाँ पे
2: तो दीदी ये तो बड़ी अपन मुंशहर छु दीदी अपन यहाँ पारंपरिक व्यंजनों के बारे में हमन के बताओ
0: मुंशहरी जो पारंपरिक व्यंजन छो उसको बहुत सुन व्यंजन दो कुकाल छु और तिमरो सूप है गे और चुन्नी छू जया सत्तू और पतिउड़ और शिरा खाज
1: अच्छा
0: उसको बहुत छो यो मुख्य सुन यो वहाँ
2: व्यंजनों के बारे में आप बता दीदी तो इन मटी जैसा आप कौन है या जिया सत्तू तो जिया सत्तू को कसिक बड़ोनी और मैं के चीज का सामान जरूरत है
0: अरे जिया नहीं एक वो हमारे जोहार में जोहार जो मिला मुसू ना जोहार वहाँ एक लोहेटा पेड़ हूँ तो वो पेड़ को खाल का कुटबेर उसकी जिया पत्ती जैसे चाह पत्ती नहीं होना उससे जिया लोहेटा मतलब वो पत्ती बनोनी हुई
1: अच्छा
0: तो पानी में खींच गई मोबाइल दिए हम गए तो मैं घू हल्दी थोड़ा नमक हल्दी दूध और इलायची वो एक जैसे छह का माननी ने छह का माननी वालों नहीं हूँ तो हमारे वहाँ एक दुमुक दुमुक बुर्दुम लकड़ा हूँ तो मैं उसका खींच गिर तो ऐसे ऐसे का फाननी हो गए
2: अच्छा
0: जैसा छह फाननी उसका फाननी उसका तो मत छह इसका चर सका घूमो नहीं वो ठड़का इसका दुमुक में आए तो वही तो बहुत सुंदर भी जा बनू तो वही दगड़ एक सत्तू हूँ तो सत्तू जो भी मतलब पूरा हमारे पारंपरिक व्यंजन में हूँ सत्तू का हम लोग बने भी धर दू और जल्दी बनने भी जल्दी अब पहले जमाने में ये सोची ने चाहनी पीछे को तो यो जा भे और जा दगड़ यो सत्तू सत्तू मडवागले बने सकता और गेहूं के लिए बने सकता
2: तो सत्तू कैसे बनने
0: सत्तू इसको बनोनी गेहूँ का पका देनी पहली उसे देनी पर सुखा दे वहाँ पे सुखा दे फिर भून दे दसाल में ओके भून दे ओके सुखा दे फिर ओके भूनो फिर वो मैं पीस या जतार में पीसा चक्की में पीसा पहले तो जतार में पीसनी भाई अब चक्की में ले पीसनी लेकिन यो मतलब जल्दी बन जानी भाई और जो शिरोल जो खाज हो शिरोल खाज वो धान का बनी धान धान का पका दे पका दे फिर भूट दे गए
2: धान का कैसे पकौड़ भाई पानी में
0: धान का हो धान का बनी पानी खींचो वो धान का लो उसे दिन हो गए उसे भी मतलब थोड़ा लाई जाऊँ थोड़ा थोड़ा कोई वो मैं लाई जाऊँ मतलब फूल जाओ ना वो धान का जो टूक हो ना वो चिरी जाऊँ वो कभी धूप में सुखा दे तो वो कहे भून वहाँ पे उसके भून भून भी रुके कूट उखो में उखो में कूट में वो शिराव खाज बन जाने भाई और वो शिराव खाज में आज दोबारा भून जाए जब वो कुरकुरी खाज बन जाओ
1: अच्छा
0: जैसा खजिया अगले बोलनी अलग अलग प्रकार है धान उन्हें तो ये खाज बोलनी कोई शिरोल तो खराब नहीं होने बाद में तो शिरोल खाज पहली बेटी बहुत बड़े भी रखनी में सत्तू तो टेम बी टेम जो अगले घर में वहाँ हमेशा बने एक एक थैल में एक एक डब में पीस भी धर देनी भाई और जल्दीबाजी में कोई कोई मैसा या कोई जो सत्तू खाने वालों ज्यादा हल्दी एक थोड़ा कटोरी होटूल कासा ब्याल उसी ना पहली हमारे वहाँ कासा ब्याल में खींच देने हो गए अरे बहुत टेस्टी हूँ और गर्म लो हूँ
1: अच्छा।
0: और स्वास्थ्य लीजिए भलो दवाई काम लो जिया
2: एक और अपुल को की चुन्नी यो व्यंजन के कैसे बनाई जाए
0: अच्छा यो चुन्नी यो भी यो लो हमारे वहाँ ज्वार में खेत करनी फापरक खेत करनी अचानक जमाने में वो है रो कदू 1200 रुपए की जी
1: अच्छा
0: 1200 रुपए महंगू दो महंगू छू तो वो त्यार ब्यार में बनू हम क्या शुभ काम में बनू
1: अच्छा
0: फापर उसका पीस भी सुखाए बेर फापर के सुखाए पीसो तो उसके फाइन बेर पानी में फैन दे फिर तेल कढ़ाई में तल देनी हो गई चीनी ही नहल बेर तो वो चुन्नी बनो इतना पुआ जस हूँ अच्छा। मतलब गोल उन्हें भी वो मैंने चकाओ चकाओ हूँ
1: अच्छा।
0: तो ये चुन्नी तो
2: उमे के डालने में फापर पीसी में क्या मिलूंगा
0: फापर पीसी में चीनी हलनी भी और पानी हलनी भी और बहुत टेस्टी हूँ त्यार ब्यार में बनूनी और जैसे शुभ काम में हमारे जो ज्या सुने आके ब्याह हो लो जब पहले क्या काम करूँ छू आज चावल छटाई छू तो श्रेणी सब गोश्रेणी आलत ऊके पहले जा सत्तू या कुछ खाज कोई खाज खानी कोई अचानक जमना का सब खाजा खानी सत्तू पुराने मैच खाने भी बिल्कुल नाश्ता है जाऊँ एक बढ़िया
2: चुन्नी के बारे में आपुल बता और एक आपुल बता कि पतिउड़ हम

0: पति दर तो वो मैं घोल लेगा तीसर पति वैसा कभी वो रोल बना दिए रोल
1: अच्छा
0: बना दिए तो उके आप गर्म पानी में ये वो भाप देनी हो ना वो छन्नी में धर दी हो गए और भाप में पकाए बेर फिर वो पक गया भी धर दी उसको ठंडे होने दे फिर तेल में वो जम्बू धुआर हल जी में जम्बू का जो धुआर को नहीं हम उनचन में या तो सब जम्बू को नहीं वहाँ धुआर होने भी ना वो तड़का लगाई देनी वहाँ नमक मिर्च मसाला में और नाश्ता में तो बढ़िया डिश हो पति नाश्ता में लगा मैं जहाँ
1: तो दीदी आप बहुत बढ़िया है जिया सत्तू हो गई चिन्नी हो गई पतूर हो गई बड़ी बड़ी व्यंजन आप बताई
2: जो तुम कह के हम वहाँ कुकला एक व्यंजन छू तो वो कुकला का बनाना की विधि हमारे दगड़ियों को बताओ
3: अच्छा जो वो कुकला छू जहाँ उनका सुंदर कला नाम ले छू एक
2: अच्छा सुंदर कला
3: तो वो तो हमारे पारंपरिक डिश भी उसके मुंशारी
2: अच्छा
3: तो वो कुकाल का पहली पिशु को गुद्दी फिर और पतीला में पानी धरे गरम पानी तो ओके भी चकला में बारीक बनून बे इसका हाथल लोई लोई बनाए बेर जैसा घुघुनी बनू ना उसको लंबो लंबो बनाए बेर उसका सब बॉइल करन बे पता लच्छे से बनाए बेर फिर बॉइल करो फिर पानी का निथर दे
2: अच्छा।
3: फिर आधे घंटे बाद उके जम्बू और काला जीरा में छोक बेर मसाला वसाला लगाए बेर तब उसका बढ़िया नाश्ता है जहाँ तो ये तो हमारे मुंशहरी में फेमस बेस्ट डिश
2: अच्छा
3: तो ये तो हम नाश्ता में ले बनोनू और इतका उतका जाड़ में कोई फट्ट बने देनी वो नाश्ता में तो वो बिल्कुल मुंशहरी फेमस छो पारंपरिक डिश छो हमारे वहाँ मुंशहरी के कुकाल
2: कुकाल चलो ये कुकाला बारे में आप बता हमला बनू
3: स्वास्थ्य लीजिए ले बहुत बल सी हो पौष्टिक आहार में होने
2: हो
3: खाए के नुकसान ले नहीं होने
2: बढ़िया हो योग किसी भाव जैसा आजकल हम देखो ना कि लोग चाउमीन खानी मोमो खानी मैदा खानी तमाम बिल्कुल बीमारी जाने तो ये तो भला
3: ये तो बहुत बिल्कुल ये कुकाला वाला जो बहुत बढ़िया डिश है
2: घर में आप साफ सफाई बढ़ाओ और ज्यादा तेल
3: तेल हेल के नहीं पड़ने में ठीक जो खासा वही का हिसाब मसाला लो और वो मैं काला जीरा होना ही हम उनसे वहाँ जोहार में मिलूंगा
2: अच्छा
3: तो काला जीरा और जो जो जम्बू हूँ वही थोक लगे फिर अपन अवस्था अनुसार मसाला लियो मैं तब खाओ तो चाह दगाड़ लखाओ गए और रोटा दगाड़ लखानी बहुत लोग तो बहुत बढ़िया हुई स्वास्थ्य लीजिए बहुत बढ़िया छो
2: ये कुकल तो बहुत बड़ी पारंपरिक व्यंजन आप लोगों को छू हमने जो हमारे श्रोता सुन ला रही उन्होंने आप लोगों ने जरूर एक बढ़ाया कि कौश खान में हूँ एक आप लोग तिमुरा सूप ला आप लोग ये तिमूर के हूँ
3: तिमूर एक जो हमारे वहाँ मुंशहर में हुई तिमूर और ये इतना तक दांजे लगनी वो भीतर बैठे गूद निकाल दिया ऊपर निकाले और मुंह में डाल ले तो झमझम झमझम झमझम हो
2: अच्छा अच्छा
3: तो ये एक जो यो दांत उन लगनी ये छिकल वाला तिमूर जो डंडे मंडे हो ना वही दांत को नहीं और ये तिमूर जो खूब गर्म हो
2: अच्छा
3: क्योंकि तिमूर का जब तब टिपनी वो काट भी लोनी पर घाम में सुखा दी सुखा दिए भी उधर धरनी पर आप जाड़ो में ये सूप बनोनी
2: तो ये तासीर गर्म होने
3: ओहो ये तो खूब गर्म भी एक कटोरी पी ली बिल्कुल जाड़ो ऐसा नहीं हो गर्म है जल बदन
2: तो कैसे बनने तो सूप
3: तिमूर का हल्का मणि हल्का गर्म कर दे तो मैं हल्का गर्म कर दे और फिर लहसुन में और खुशियाड़ी में सब लगाए हुए लूण में पीस दे सिल में सिल में पीस दे वहाँ पर कढ़ाई में तेल खींचा या घी खींचा उनका खींच वेर ओके भून देनी हल्को
2: अच्छा
3: हो और ऊपर फिर प्याज ह्याज हल वो कोले कोली वेर उसमें पानी खींचो और थोड़ा गाढ़ा बनो चाहिए मैंने भांगा सूप ला दे
2: अच्छा भांग पीस भी
3: भांग पीस भी मनी सूप छान भी हाल दी मैं तो वही सूप पी लीजिए तो बिल्कुल बदन गर्म है जाते हम तो जाड़ो में कद रोज बनू हूँ ये लूण ले बनू तिमूर लूण मटुआर वर्ड का तिमूर लूण
2: अच्छा तिमूरा लूण ले बनो
3: सर हो लूण बनो ये कि दगड़ ला खा सकते तिमूरा लूण ले आलू में खितनी हम तिमूर ये मतलब भलू ना स्वास्थ्य लीजिए यो जाड़ों की तो बहुत भल भी तिमूर तो हमारे तो ये मुंशहर में तो बहुत हमारे मुंशहर वाले सब जाड़ों में कह जाओ तुम तिमूर साग सब बनोने घी में मैं स्वादिष्ट बनो
2: मुंशहरी के बढ़िया बढ़िया व्यंजन आप हमको बताई तो हमारे श्रोताओं थे आपको केक पहुँचाला दीदी
3: महिलाओं का अपन स्वास्थ्य लीजिए भलो के खान पान में ध्यान दिन चाहिए
2: बिल्कुल
3: और जब स्वास्थ्य ठीक रहो तब उन्हें घर बार ले ठीक चलल भली कभी साफ सफाई कभी भली कभी खान पीन में अपन स्वास्थ्य लीजिए भल के ध्यान दिन भी
2: बिल्कुल और ये तो भल भल व्यंजन हमारे यहाँ में कंजूसी निकलन
3: वहाँ हमारे मुंशहरी भल व्यंजन छो हमारे कुमाऊँ ले कदू भल व्यंजन छो एक से एक व्यंजन छो हमारे कुमाऊँ में ले तो भली कभी पकाए बेर साफ सफाई ले अपन स्वास्थ्य लीजिए जिसको मतलब पौष्टिक आहार बनाए बेर खा सकनी सब बेणी अपन परिवार में नाना पीना सब उनके भली के बेर खाना चाहिए और तब उन स्वास्थ्य ले रोल और नानतीन ले सब ठीक रोल अचानक बीमारी हिमारी ले बहुत है जहाँ गंदगी हंदगी कई बेर हर चीज का ख्याल कई बेर खाना चाहिए उनके तब अपन स्वास्थ्य सब सब घर बार सब ठीक होने रही
2: बहुत भल भल बात दीदी आपुल बताई हमको व्यंजन के बारे में, तो आपुल बताई दगड़ा कि हमारे दगड़े उनके कसी अपन घर परिवार के।

0: स्वस्थ रहना के काम करना चाहिए, भले का साफ सफाई ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक भोजन अपन पूरे परिवार का खाना चाहिए। आप बता बहुत भल भल जानकारी आप दे ये तो अमूल्य वक्त हमन के एक लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: मुंसारिक पारंपरिक व्यंजन यह विषय पर श्रीमती इंदिरा घनगरिया जो करी गई मेरे क्षेत्र संकलित बातचीत आप लोगों ने सुनी। उम्मीद करो कि आप लोगों के ये बातचीत भल लाभ होने और आप लोगों ने यो जो भल भल पारंपरिक व्यंजन मुंसारिक उन्होंने बताए उनके बड़ा वे अपन खाना स्वाद के बढ़ाला और आधुनिक कार्यक्रम में करना आप लोगों को मनोरंजन और सोनू योगी।

मैपाल मेहता और ज्योति प्रतीक गाई योगिता प्रोबल सुनो एवं कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंते और अब मखा थोड़ा लगा आज आगे अपन कार्यक्रम का संपन्न करना है तो अपन रेडियो दगड़ी दीपा जोशी का अनुमति दियो आगे का फिर भेंट हुई नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
3: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स सीमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
4: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: FM 100.5 MHz पर आकर
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिलेगी प्राथमिक दर्शन की सुविधा। SOP जारी और किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड के सिल्क पार्क भवन मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दून सिल्क रिटेल आउटलेट, रेशम वस्त्र बुनाई कार्यशाला, प्रशिक्षण केंद्र और कार्यालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रेशम उद्योग से जुड़े बुनकरों और कारीगरों से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों की जानकारी ली। सहकारिता मंत्री ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण, विपणन सुविधा सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्तराखंड के रेशम उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके। डॉ. रावत ने कहा कि रेशम उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और इससे जुड़े बुनकरों और कारीगरों के हितों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश स्तर पर करवाई जा रही रैंकिंग में सुधार और वरीयता के लिए निगम ने शहर के सभी 40 वार्डों में घर घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए 150 पर्यावरण मित्रों सहित 13 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है जो सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करेगी। मेयर अजय वर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा नगर को स्वच्छता सर्वेक्षण में विशेष स्थान मिले उसके लिए नगर निगम घर घर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है।
7: नगर निगम ने ये तय किया है कि इसको प्रमुखता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ इस कार्य को हमने करना है, क्योंकि जब हमारा नगर स्वच्छ रहेगा तभी एक अपने शहर के प्रति एक अच्छा संदेश समाज के बीच में जाएगा और पूरे प्रदेश के अंदर में जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे बिंदु यहाँ पर को रखे हुए हैं कि एक हमने ये तय किया है कि डोर टू डोर का ये जो अभियान प्रारंभ करने वाले हैं ताकि हम नगर को स्वच्छ बनाने में अपनी ईमानदारी के साथ अपने इस कार्य को निभा सकें।

0: नगर निगम के मुख्य पर्यावरण पर्यवेक्षक राजपाल पवार ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को उत्कृष्ट स्थान मिले इसके लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
1: अभी वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है कि हमारा रैंकिंग बढ़ सके और हमारी रैंकिंग जैसे पहले से भी अच्छी आती रही है और इससे इस वर्ष भी और अच्छी आ जाए, तो हमारे पर्यावरण मित्रों का और हम जितने पर्यावरण पर्यवेक्षक हैं हमका यही प्रयास है कि नगर को एक और अति सुंदर बनाने में साफ सफाई नियमित रूप से की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले की जा रही है। जहां जहां एकत्रित कूड़ा था, कहीं स्पॉट में काफी समय से कूड़ा एकत्रित था, उसको भी हमारे पर्यावरण मित्रों द्वारा हटाया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं मंडल के शहरों में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब 2043 करोड़ रुपए की व्यापक जल निकासी योजना तैयार की गई है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मंडल के 14 शहरों के लिए तैयार प्रस्तावों की सचिवालय में समीक्षा की। बैठक में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पहले चरण में जल भराव से सर्वाधिक प्रभावित 10 शहरों को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। इनमें टनकपुर, बनबसा, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, गदरपुर, सितारगंज, हल्द्वानी और मालधन चौड़ सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख सचिव ने सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में पहले जल निकासी कार्य शुरू करने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से मास्टर प्लान के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि पहले चरण के बाद शेष 4 शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए प्राथमिक दर्शन सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंदिर समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने इसके लिए आदेश जारी किए। SOP के तहत 50-50 श्रद्धालुओं के 15 मिनट के 4 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें केवल वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को आधार कार्ड और पंजीकरण के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए वास्तविक स्थिति का आकलन करने के बाद प्राथमिक दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर समिति कार्मिक दर्शन में श्रद्धालुओं की सहायता करेंगे। किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि NPS योजना किसानों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
3: जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो लाई गई है सरकार के द्वारा, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी तक पेंशन सीमित है, परंतु हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको जब वो कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है उनके पड़ाव पे, तो उसके पास एक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक पेंशन का विकल्प हो, उसके संबंध में जागरूकता के रूप में कार्यशाला आयोजित की गई थी बैंक द्वारा। और हमारी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि वो आज जब वो यंग हैं और अपने यहाँ काम करते हैं उसी टाइम से वो इन्वेस्टमेंट शुरू करें इस स्कीम में, और जब वो 60 साल या उससे ज्यादा आयु के हो जाते हैं और जब वो काम करने में उतने सक्षम नहीं रहते, तो उनके पास एक फिक्स आयु का साधन हो पेंशन के रूप में।
0: वहीं लीड बैंक प्रबंधक मनीष मिश्रा ने बताया कि NPS एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसमें कम निवेश से शुरुआत कर भविष्य के लिए पेंशन निधि तैयार की जा सकती है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर NPS योजना की जानकारी हासिल की और इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए उपयोगी बताया।
4: जो ये सरकार द्वारा NPS योजना चलाई गई है, ये बहुत बढ़िया योजना है जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें कि हम 250 रुपए से खाता खोल सकते हैं और कम से कम 10 रुपए जमा कर सकते हैं, जो कि सभी लोग कर सकते हैं, जितने हमारी सामर्थ्य है उतना इसमें जमा कर सकते हैं।
0: चारधाम यात्रा को लेकर कुमाऊं मंडल में भी परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क

0: नजर आ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है। कुमाऊं संभाग के परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंह ने बताया कि चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
1: चार धाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात तो ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिलेगी प्राथमिक दर्शन की सुविधा। एसओपी जारी और किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। शुभारंभ कर रहे हैं पलाश सेन और दीक्षांत सहरावत के गाए गीत के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अली जब सुनिए उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की आवाजों में ये नगमा।

0: चित्रा सिंह की गई इसी गजल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने अपने दायरे, आज प्रस्तुत है श्री रमेश उपाध्याय का लिखा यह नाटक। तो सुनिए अपने अपने दायरे।
2: और सुनिए, अंत में होता यह है कि सब लोग पहले की तरह अपने अपने दायरों में लौट जाते हैं और आखिर तक इस नाटक में ये पता नहीं चलता कि नाटककार कहना क्या चाहता है।
3: ऐसी बात नहीं है रोहित, ये नाटक मैंने भी देखा है और मुझे नहीं लगता कि ये एकदम निरर्थक है, इसमें अर्थ है।
2: क्या अर्थ है जीजा जी, आप मुझे समझाइए। जिस नाटक में सभी अपनी अपनी जगह सही हो, वो भी कोई नाटक हुआ, और फिर सभी सही हो तो एक दूसरे से शिकायतें क्यों?
3: मैं रोहित, ये भी तो हो सकता है कि शिकायत का कारण उन सबके बीच ना होकर कहीं बाहर हो।
2: मसलन
3: कोई ऐसा कारण जो सबको प्रभावित कर रहा हो और जिसे वो समझ ना पा रहे।
2: आप तो कभी कभी वाकई दार्शनिक हो जाते हैं जीजा जी।

0: दार्शनिक तो थोड़ा बहुत हर कोई होता है।
1: मैं तो नहीं हूँ भाई।
0: देखो नीरा भाई, कहे कोई कुछ भी, दार्शनिक थोड़ा बहुत हर कोई होता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर किसी को एक जीवन दर्शन चाहिए। अब सवाल यह है कि उसका दर्शन सही है या गलत, ये हम जान सकते हैं उन मूल्यों से, आई मीन वैल्यूज से, जिनके जरिए वो अपने जीवन में सही गलत का फैसला करता है।
2: लेकिन जब हम कोई नाटक देखें और फैसला न कर पाएं कि क्या सही है और क्या गलत, तो
0: ये नाटक की नहीं, हमारी कमजोरी हो सकती है सुनंदा जी।
1: अरे सुनंदा भाभी, तुम कहाँ उलझ रही हो इस बहस में? बहस में तुम इनसे नहीं जीत पाओगी।
2: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इनका तो काम ही दर्शन शास्त्र पढ़ाना है।
0: चलिए, अगर आप इस बहस को यहीं खत्म कर देना चाहती हैं तो यही सही, लेकिन इतना याद रखिए कि ये हम सब की और रोजमर्रा की जिंदगी की एक सामान्य बात है। जैसा इस नाटक में हुआ वैसा अक्सर हमारी जिंदगी में भी हो सकता है।
1: होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चली।
0: कहाँ?
1: हाँ, आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े लाने। हम लोग यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं और माँ अकेली रसोई में लगी है।
3: तुम बैठो जीजी, माँ का हाथ बटाने सुनंदा चली जाएगी।
2: हाँ हाँ, मैं तो उठी रही थी।
1: नहीं भाभी, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ।
2: चलिए, मैं भी कुछ मदद करूंगी।
3: अमित आया नहीं अभी तक?
0: भाई दोस्तों के साथ होगा, पूरे एक साल बाद आने का मौका मिलता है ना। लेकिन इस बार अकेले आकर उसने गड़बड़ कर दी। बीवी बच्चों के साथ आता तो सबसे मिलना जुलना हो जाता।
3: हाँ, साल में एक ही बार तो हम सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस बार बच्चे नहीं आ सकते थे, परीक्षाएं देर से शुरू हुई।
4: लीजिए, वो आ गया अमित।
0: हाँ आओ अमित। अरे भाई, हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे।
5: थैंक यू जीजा जी। रोहित भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जरा अंदर चलिए।
3: अरे ऐसी कौन सी बात है जो जीजा जी के सामने नहीं की जा सकती?
5: तो ठीक है जीजा जी, आप भी सुन लीजिए।
0: क्या बात है अमित, बड़े गुस्से में हो?
5: हाँ मैं गुस्से में ही हूँ, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है।
3: ऐसा क्या सुन लिया?
5: लोग बाग ताने मारते हैं कि हम लोगों ने बूढ़ी माँ को अकेली छोड़ रखा है और पैसा वैसा कुछ नहीं भेजते।
3: अरे ये तुमसे किसने कहा?
5: किसने कहा? यहाँ तो सारा शहर कहता है, हम दोनों भाई इतने निकम्मे हैं कि माँ को अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है।
3: क्या? अरे
5: अभी अभी मुझे पता लगा है कि माँ प्रभुलाल जी के यहाँ कपड़ों में काज बटन लगाने का काम करती है।
0: अरे किसी ने गप मार दी होगी अमित।
5: नहीं जीजा जी,
0: माँ जी को भला ऐसा काम करने की क्या जरूरत है?
5: ये गप नहीं है।
3: पर माँ ने तो कभी कुछ नहीं

0: पूछता हूँ, इस खंडर को संभालने की जरूरत क्या है? जब हम दोनों भाई स्थायी रूप से दूसरे शहरों में रहने लगे हैं, तो इस मकान को यहाँ बनाए रखने से फायदा ही क्या? भेज बात कर छुट्टी करो।
1: और इससे किराया भी कितना आता है? 150-200 रुपया बस। और उस पर भी किराएदार ऐसे हैं कि 6-6 महीने तक किराया नहीं देते।
0: और हम लोग तो उनसे किराया वसूल कर रहे आ नहीं सकते।
1: और माँ के बस का ये सब है नहीं।
0: अरे माँ का बस चले तो किराया ही माफ कर दे। मैंने देखा है किराएदारों के बाल बच्चों पर कुछ ना कुछ खर्च करती रहती हैं। और हो सकता है ये काम काज उन्हें इसीलिए करना पड़ता हो कि मकान से किराया मिलना बंद हो गया।
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मालूम किया था क्योंकि पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन पता चला कि देर सवेर भले ही हो जाए पर किराया मिल जाता है।
1: फिर इतने पैसे कमा करते क्या है?
0: यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती।
1: ये मकान तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। इसी ने हमको माँ से अलग कर दिया। माँ इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है।
2: माँ जी को इस मकान से कुछ विशेष लगाव है।
1: वो तो है और हमें मालूम है, लेकिन लगाव अगर एक दुखदायी चीज बन जाए तो ऐसे लगाव से क्या फायदा?
2: ये भावनाओं की बात होती है रोहित, इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता।
0: लेकिन जीजा जी, इस बार मैं कुछ फैसला करके ही जाऊंगा। माँ या तो मेरे साथ चले या रोहित भैया के साथ जाएं। यहाँ वो अकेली नहीं रहेंगी। मकान को बेचना हो बेच दें, नहीं बेचना तो छोड़ दें। पर अब ये नहीं होगा कि दो दो बेटों के रहते माँ बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करे।
1: लेकिन माँ को समझाएगा कौन अमित? ये कोई नई बात तो है नहीं। जानते हो जब भी ये बात उठी है तब घर में खूब घास नहीं हुई है, माँ रोई है। इसीलिए मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि माँ जैसा चाहे उन्हें करने दिया जाए। हम लोग उन्हें समझा नहीं सकते।
0: आखिर क्यों नहीं समझा सकते?
1: पिछले साल की बात भूल गए? इसी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया था और तुम अपने रोते पीटते बच्चों को एकदम खींचते ले गए थे। अमित, माँ को तो बस एक ही जिद है कि इस मकान को नए सिरे से बनवाया जाए। और भाई, मेरे पास का तो ये सब है नहीं।
0: मगर मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि आपको नया मकान ही चाहिए तो चलिए मैं जयपुर में बनवाई देता हूँ। क्या जरूरी है कि मकान यहीं बनवाया जाए और इसी जगह बनवाया जाए? और जहां तक पैसे की बात है, माँ इस मकान को बेच लेने दें तो इतना पैसा मिल सकता है कि थोड़ा बहुत और मिलाकर हम दोनों के मकान बन जाए।
2: नहीं अमित, ये बात कम से कम माँ जी के जीते जी मत सोचना। माँ जी बहुत स्वाभिमानी हैं। ये बात उनके सामने आई तो हो सकता है वो मकान तुम लोगों को सौंप कर अलग हो जाएं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद वो तुम लोगों के साथ चली जाएंगी? और मकान न रहने पर भी माँ जी ने यहीं रहने का फैसला किया, तब तो बदनामी और ज्यादा होगी।
0: तो फिर जीजा जी, आप ही बताइए क्या किया जाए।
2: माँ जी को समझाया जाए। और मेरे ख्याल में तो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि माँ जी को समझा जाए। माँ जी वृद्ध हैं, अकेली हैं, उन्हें सहानुभूति की जरूरत है।
1: लेकिन अब तक हम सब उन्हें इतने प्रेम से समझाते रहे हैं, सो
0: उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। हम लोग बकते रहते हैं और वो चुपचाप सुनती रहती।
2: फिर भी कोशिश करते रहने में कोई हर्ज नहीं। और देखो, तुम दोनों एक साथ ये बात माँ से मत करो। हो सकता है वो सोचती हूँ कि एक के साथ जाने पर दूसरा बुरा मान जाएगा।
1: नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मेरे साथ चलना चाहे मेरे साथ चले, अमित के साथ जाना चाहे इसके साथ चली जाए। क्यों अमित?
0: और क्या?
2: तो ठीक है अमित
0: जी,
2: आज रात मां जी से तुम बात करो, कल रोहित कर लेंगे।
3: अमित, तू इतनी देर से क्यों आया? ले देख, माँ ने तेरी पसंद के मिर्च के पकौड़े बनाए हैं, खा और सी सी कर, बड़ी तेज मिर्चे हैं।
0: पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो जी।
2: हाँ, ये ठीक है, पानी पीकर गुस्सा ठंडा कर लो।
3: इससे गुस्सा आया हुआ है?
2: हाँ,
3: किस पर?
2: पानी पर, हवा पर, बादलों पर, शहर पर और हम सब लोगों पर।
3: बस बस, रहने दीजिए, अमित के गुस्से को इतना फालतू समझ रखा है आपने।

0: आखिर मुझे बात तो बताओ मां, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? बोलो ना, चुप क्यों हो मां?
1: क्या बोलूं अमित,
0: हम लोगों से कोई गलती हुई है?
1: नहीं रे, ये तो से किसने कहा?
0: तो फिर तुम यहाँ अकेली क्यों पड़ी हो?
1: मेरा मन यही लगता है बेटा।
0: मन लगने की बात तो समझ में आती है माँ, और इसीलिए अब तक हम लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ भी रखा था, लेकिन ये मेहनत मजदूरी किस लिए? बोलो माँ, किस लिए? तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझसे कहो कितना पैसा चाहिए तुम्हें?
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए अमित।
0: तो फिर तुम नाराज क्यों हो?
1: नाराज? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ बेटे।
0: तो ये सजा हमें किस बात की दे रही हो माँ? मैं तुम्हें मनी ऑर्डर भेजता हूँ, तुम लौटा देती हो, यहाँ आकर जबरदस्ती दे जाता हूँ,

0: तो तुम उन पैसों से कुछ ना कुछ खरीद कर बच्चों के लिए भेज देती हो। ये सब क्या है मां? अरे तुम फिर चुप हो गई? मैं जानता हूं तुम क्यों नाराज हो। मैंने और भैया ने तुम्हारी ये बात नहीं मानी कि इस मकान को नया बनवाया जाए, लेकिन मां तुम भी तो हमारी बात नहीं मानती। जरा सोचो तो, यहां मकान बनवाकर हम लोग उसका करेंगे क्या?
1: ये बात तो अमित मैंने उसी दिन मान ली थी जिस दिन मकान बनवाने की बात पर तू गुस्सा होकर जयपुर चला गया था। बहू और बच्चों को खाना भी नहीं खाने दिया था तूने, थाली पर से खींचकर सबको उठा ले गया था तू।
0: लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी जिद तो नहीं छोड़ी माँ?
1: उसके बाद मैंने तुझसे कुछ कहा?
0: कहा नहीं तो क्या, जिद तो तुम्हारी वही।
1: क्या जिद कर रही हूं मैं?
0: साफ कहलवाना चाहती हो? तुम्हारी जिद ये है माँ कि मकान बनेगा, यही बनेगा और जरूर बनेगा। तुम शायद हम लोगों को चुनौती दे रही हो कि तुम अपनी मेहनत मजदूरी से मकान बनवा लोगी, लेकिन मां राई राई जोड़कर पहाड़ नहीं बना करते। खैर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, मैं भी कसम खाता हूं कि इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं जा रहा हूं।
1: अमित, अमित सुन तो, चला गया।
2: माँ जी, अमित को नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया।
3: और तुम तो जानती हो माँ, वो तो शुरू से ही गुस्से वाला है।
1: मुझसे गलती हो गई नीरा।
3: गलती वलती कुछ नहीं हुई माँ, गलती हुई भी होगी तो अमित की तरफ से हुई होगी, लेकिन इस तरह अमित का चला जाना अच्छा नहीं हुआ। साल में एक बार तो हम सब मिलते हैं, उसमें भी।
2: छोड़ो नीरा। अच्छा माँ जी, आप एक बात बताइए, आप हम लोगों से क्यों नाराज हैं?
1: तुमसे भला क्यों नाराज होने लगी शेखर, पूछ देखो पड़ोसियों से, बेटी दामाद के तो हमेशा गुणगाती रहती हूँ मैं।
2: तो मेरी एक बात मानेंगी आप?
1: बस अपने साथ ले जाने की बात मत करना बेटे, बाकी तुम्हारी सब बातें मान लूंगी। बोलो।
2: लीजिए, आपने तो बात ही खत्म कर दी, अब क्या बोलूं?
3: चलो ये ना सही, एक और बात मान लो माँ।
1: बोल।
3: काम करना छोड़ दो माँ, तुम नहीं बताना चाहती इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम काम क्यों करती हो, लेकिन अपने शरीर की तरफ तो देखो माँ, तुम्हारी उम्र क्या मेहनत मजदूरी करने की है? तुम्हें पैसे की तंगी रहती हो तो मुझे बताओ।
2: हाँ माँ जी, मुझे भी आप अपना ही बेटा समझिए।
1: तुम तो बेटों से भी बढ़कर हो शेखर, लेकिन काम तो मैं इसलिए करती हूँ कि मन लगा रहता है, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूँ।
2: तो मैं आपके लिए पुस्तकें भिजवा दूंगा, पढ़कर मन बहलाइए, और समय बिताने के और भी तो कई उपाय हो सकते हैं माँ जी।
3: माँ लोग क्या सोचते होंगे?
1: लोग यही सोचते होंगे कि बुढ़िया पैसे की लालची है, तो सोचने दो बेटी।
3: लेकिन माँ लोग ये नहीं सोचते, लोग सोचते हैं कि बेटी बेटी माँ की परवाह नहीं करते।
1: लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता नीरू, लोग तो 50 तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए तुम ये सब चिंता छोड़ो। चलो उठो, तुम लोग अपने जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे सफर के लिए खाना बना दूं।
3: माँ रहने दो।
1: हट पगली, तू भी क्या अमित की तरह गुस्सा होकर जाएगी? तुम दोनों को मेरी सौगंध जो यहाँ से नाराज होकर गए तो।
3: माँ

0: सुनंदा, माँ कहाँ है?
1: रसोई में है। देखा आपने, सब लोग कितने तेज निकले। जाने की जल्दी हम लोगों को थी और चल दिए खुद। हमें अब कितने दिन और रुकना पड़ेगा?
0: तुमने माँ से बात की?
1: नहीं जी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। माँ जी आप लोगों के जाने के बाद बहुत रोई हैं।
0: यही तो मुसीबत है सुनंदा। माँ बहुत ज्यादा संवेदनशील है और उतनी जिद्दी भी। हर साल पिताजी की बरसी पर हम लोग यहाँ आते हैं और मैं, अमित, जी जाजी सब मिलकर माँ को समझाते हैं कि वो यहाँ अकेले रहने की जिद छोड़ दे। मगर नहीं, माँ को रहना भी यही है और दुखी भी रहना है।
1: मगर सुनिए, भावुकता से जरा हट कर सोचिए कि इन सबसे फायदा क्या है। माँ जी विधवा हैं, बूढ़ी हैं, अकेली हैं। इससे अच्छा उनके लिए और क्या हो सकता है कि अपने बेटों के पास रहें और अपने नाती पोतों को संभालें।
0: हाँ सुनंदा, होना तो यही चाहिए था, लेकिन हम

0: लोग माँ को वो सुख नहीं दे सकते जो वो हमसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करें, और बेटे नालायक हैं।
1: सपने? अधूरे सपने?
0: हाँ सुनंदा, माँ को आशा थी कि हम दोनों भाई कमाने खाने लगेंगे तो पैसा जोड़कर मकान बनवाएंगे।
1: लेकिन माँ जी को ये तो सोचना चाहिए कि जब बेटे दूर दूर शहरों में और अलग अलग रहने लगे हैं तो यहाँ मकान बनवा कर क्या करेंगे।
0: यही बात तो है, और माँ की समझ में ये बात नहीं आती। माँ बहुत जिद्दी है, हम लोगों ने इनकार कर दिया तो वो अब शायद ये सोच रही हैं कि अपनी मेहनत मजदूरी से मकान बनवा लेंगी। माँ आज के जमाने में पुरानी प्रतिष्ठा के पीछे पागल है।
1: लेकिन अजीब बात है, माँ जी अपनी प्रतिष्ठा के सामने अपने बेटों की प्रतिष्ठा को कुछ नहीं समझती। इतनी बदनामी के बाद मकान बन भी गया तो उससे क्या। आई माँ जी।
2: रोहित से कह दे खाना खा ले।
1: चलिए खाना खा लीजिए।
0: चलो।
1: लेकिन यहाँ से चलने के बारे में क्या सोचा आपने?
0: दो दिन और रुकना पड़ेगा, सब लोग एक साथ चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं दो दिन की छुट्टी और बढ़ा लेता हूँ, शनिवार को हम सब लोग यहाँ से चल देंगे।
1: ठीक है।
2: रोहित, मैंने रामधन से कह दिया है, वो तांगा लेकर आ रहा है।
1: आपकी किराएदारों में रामधन भाई बहुत अच्छे हैं माँ जी, सब काम कर देते हैं।
2: इन्हीं लोगों के सहारे पड़ी हूँ बहू, गरीब लोग हैं, किराएदार होने के नाते कभी कभी लड़ झगड़ भी लेते हैं, लेकिन दिल से अच्छे हैं। आधी रात को भी कोई काम बता दूं तो दौड़ कर कर लाएं।
0: माँ एक बार फिर सोच लो, अगर तुम्हें चलना हो तो दो दिन की छुट्टी और मैं ले लेता हूँ।
2: चल तो नहीं पाऊंगी बेटा, लेकिन तुम लोग दो चार दिन और ठहर जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: नहीं माँ जी, बच्चे अकेले वहाँ परेशान हो रहे होंगे।
2: उनको साथ ले आए होते तो अच्छा रहता, साल भर हो गया उन्हें देखे।
1: मैंने बताया तो था माँ जी, उनके इम्तिहान चल रहे थे। आप चलिए ना माँ जी, बच्चे तो हमेशा दादी दादी करते रहते हैं।
2: वे जीते रहे, सुखी रहे बहू, मेरे बच्चे मुझे याद कर लेते हैं, यही बहुत है मेरे लिए। लो जाओ तुम लोग, बच्चों की छुट्टियां हो जाए तो कुछ दिनों के लिए आ जाना।
0: चलते चलते ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए माँ, लेकिन कहनी पड़ रही है कि अब हमारा संबंध माँ बेटे का नहीं।
2: नहीं नहीं, ऐसा मत कहो रोहित, ऐसा मत कहो बेटे, ऐसा मत कहो।
0: रो नहीं माँ, सारा शहर यही मान रहा है कि हम लोगों के बीच संबंध खत्म हो चुका है, और ऐसे शहर में आकर क्या होगा माँ, जहाँ चारों तरफ उंगलियां उठे कि देखो एक कपूत जा रहा है। चलो सुनंदा,
1: मुझे आशीर्वाद दीजिए।
2: सुखी रहो बहू, सौभाग्यवती रहो, तू तो नहाओ पोतो फलो।
3: अरे भाई, तांगे वाला इंतजार कर रहा है।
0: चलो सुनंदा,
3: लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं रखे देता हूँ, तुम बैठो।
0: अच्छा रामधन भैया नमस्ते।
3: नमस्ते तो ठीक है, लेकिन रोहित अब चाची का थोड़ा ख्याल रखा करो, बुढ़ापे में तुम लोगों के सिवा और इनका है कौन।
0: आप लोग हैं ना अपने और सगे। चलो भाई तांगे वाले,

सब चले गए। चार दिन सब कितना भरा भरा लगने लगा था, फिर सब खाली, फिर वही अकेलापन। कौन समझता है किसी का दर्द, सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, समझते हैं बुढ़िया जिद्दी है, स्वार्थी है, लालची है, असली बात कोई नहीं जानता, कोई जानना चाहता भी नहीं। और मैं भी तो नहीं बता पाती। कई बार मन में आया कह दूं साफ साफ, कह दूं कि इस मकान को बेचने के लिए तो तुम दोनों तैयार हो, पर क्या इसका कर्ज चुकाने को भी तैयार हो? कभी सोचने की जरूरत समझी तुमने कि माँ ने तुम्हें किस तरह पढ़ाया लिखाया है? तुम्हें लोगों के लिए मैंने मकान गिरवी रखा था, तुम छोटे थे इसीलिए कभी तुम्हें नहीं बताया। सोचती थी बड़े हो जाओगे, कमाने खाने लगोगे तो बता दूंगी, लेकिन तब तक तो दुनिया ही बदल गई। तुम्हारी नौकरियां लग गई, तुम्हारी नजर मकान पर गई, और तुम्हें अपने अपने मकान बनवाने की चिंता हुई। तुम दोनों भाई सलाह करके मेरे पास आए, माँ इस मकान को बेच दूं? मैंने कहा बेटा मकान का कुछ कर्ज है तुम लोगों पर, और तुम लोग पूरी बात सुनने से पहले ही भड़क उठे। जो भी

0: क्या बात है भाभी, आज तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। डॉक्टर को बुला रहा हूँ।
1: नहीं भैया, जरा वो दवाई उठा के पिला दो।
0: आज तो बुखार भी बढ़ गया लगता है। बुढ़ापे में ईश्वर किसी को ऐसा दुख न दे। लो दवाई पी लो।
1: सुखी रहो भैया, मुझे कोई दुख नहीं है।
0: हाँ हाँ, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे भाभी, हम तो तुम्हारे किराएदार हैं, लेकिन तुम्हारा दुख तो सारा शहर जानता है। रोहित, अमित को चिट्ठी लिखवा दी थी ना तुमने? कोई आया नहीं।
1: उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई होगी भैया।
0: अब देख लो, अब की दोनों आए तो कस के डांट लगाऊंगा। कहूंगा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग मजे कर रहे हो और माँ तुम्हारी मरी जाएगी।
1: नहीं भैया, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: पर भाभी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा दूं?
1: नहीं भैया, नीरू को खबर हो गई है, उसका तार भी आ गया है, सुबह तक वो लोग आ जाएंगे।
0: नीरू आ रही है, तब तो ठीक है। मेरी बात मानो तो भाभी, तुम उसी के साथ चली जाओ। मुझे तो तुम्हारे दामाद, क्या नाम है उनका, शेखर भी बहुत बढ़िया आदमी लगते हैं। वो लोग तुम्हारी खूब सेवा करेंगे भाभी।
1: हाँ भैया, शेखर तो कई बार आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए, मैं ही नहीं गई। अब की बार लगता है जाना ही पड़ेगा।
0: अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत पड़े तो आवाज दे लेना।
1: अच्छा भैया, जाओ सो जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
2: कहिए माँ जी, कैसी तबीयत है आप?
3: अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेखर, इतनी सेवा टहल के बाद तुम मरते भी जी जाए बेटे।
4: लो माँ, ये सूप पी लो।
3: अरे अब ये सूप ऊप रहने दे, अब तो मैं बिल्कुल भरी चंगी हूँ, घूम फिर लेती हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ।
4: तो क्या हुआ, लो पियो।
2: क्यों नीरू, आज शाम मां जी को कहीं घुमाने ले चले?
4: हाँ ये ठीक है, पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, फिर थोड़ा घूम फिर कर लौटेंगे। माँ कोई पिक्चर देखोगी?
3: पिक्चर दिखाएगी मुझे इस बुढ़ापे में?
2: क्यों माँ जी, बड़े बूढ़ों को मनोरंजन की जरूरत नहीं होती क्या?
3: नहीं बेटे, तुम लोग देख आना, मेरे कारण महीने भर से तुम लोग कहीं निकल नहीं पाए, दिन रात मेरी सेवा में ही लगे रहे हो।
4: क्या बात करती हो माँ।
2: नीरू, तो यही तय रहा कि शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, रोज गार्डन में घूमेंगे और पिक्चर देखेंगे।
4: हाँ।
2: मैं कॉलेज से लौटते समय टिकट लेता हूँ।
3: सुनो शेखर, अब मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ।
2: क्यों माँ जी, ये घर क्या आपका नहीं है?
3: घर तो ये भी अपना ही है बेटे, पर अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे वापस जाकर अपना कामकाज देखना है बेटे।
4: कामकाज? माँ तुम्हें कितना समझाऊं, कामकाज करने की तुम्हें क्या जरूरत है? रोहित अमित इतना कमाते हैं, मकान का किराया आता है, फिर किसी बात की जरूरत हो तो हम लोग हैं।
2: और माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, आपने वो कमी पूरी कर दी, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
4: हाँ माँ, देखो ना बॉबी भी तुमसे कितना हिल मिल गया है।
3: लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा नीरू।
4: क्यों माँ?
3: बात यह है नीरू कि अपना मकान गिरवी पड़ा है।
2: क्या?
3: और मुझे जाकर उसे छुड़ाना है।
4: मकान गिरवी पड़ा है?
2: ओ।
4: कब रखा और क्यों, किस लिए?
3: कई साल हो गए नीरू, रोहित अमित पढ़ रहे थे उन दिनों, और घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी खत्म हो गई थी, इसलिए।
4: लेकिन ये बात तो तुम्हें कभी बताई नहीं माँ, रोहित अमित को भी शायद नहीं मालूम।
3: बता कर क्या करती नीरू, वो तो शुरू से यही समझते आए हैं कि माँ के पास बहुत पैसा है और माँ कंजूस है।
2: ओ, अब मैं समझा कि माँ जी वो नौकरी क्यों करती हैं।
4: ओ माँ, तुमने मुझे भी अपनी बेटी नहीं समझा, मुझे बता देती तो हम लोग जैसे भी होता मकान को छुड़वा देते।
3: नहीं नहीं, तुम लोग क्यों छुड़वाओ, जिनके लिए गिरवी रखा गया था उन्हीं को चिंता नहीं है तो तुम क्यों?
4: पर उन लोगों को भी तो तुमने नहीं बताया माँ।
3: एक बार बताने की कोशिश की थी नीरू, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, कुछ का

0: कुछ समझ गए और ऐसी ऐसी बातें कह गए कि मैं फिर उनसे कभी कुछ नहीं कह सकी।
1: क्या कहा उन्होंने?
0: बोले कि वो माँ जो बेटों को पालने पोसने के बदले में कुछ चाहती है, तो वो माँ कैसी? अमित को तो तू जानती है ना, कहने लगा हम कोई ऐसी चीज नहीं है माँ जिसमें पैसा लगाया जाए और बाद में उससे मुनाफा कमाया जाए।
1: तमीज कही का, इस लड़के को कभी अकल नहीं आएगी। पता नहीं हमारे घर में ही अकेला सबसे अलग कैसे निकल गया। कौन सिखा देता है आजकल के लड़कों को ऐसी बातें?
2: ये अकेले अमित का दोष नहीं है नीरू, आज के हमारे जीवन मूल्य ही ऐसे हैं। पुराने मूल्य बहुत अच्छे नहीं थे इसीलिए वो टूट भी गए, पर ये नए मूल्य भी ठीक नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं, जबकि समाज को ऐसे मूल्य चाहिए जो हमें एक दूसरे से जोड़ें, एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में प्यार ममता और सहानुभूति पैदा करें।
1: लेकिन माँ एक बार तो तुमने मुझसे कहा होता।
2: खैर मां जी, जब सूरज निकले तभी सवेरा, अब आप निश्चिंत होकर जा रही है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि किसका और कितना रुपया देना है, मैं अपने प्रोविडेंट फंड से निकलवा लूं।
0: नहीं बेटा नहीं, तुम्हारा पैसा मैं नहीं ले सकती
1: और हमारे पास रह भी नहीं सकती। लेकिन क्यों माँ क्यों, क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ?
0: नीरू मेरी बेटी, तुम लोगों से ज्यादा मेरा अपना कौन है? लेकिन जिनसे मैंने सुख चाहा था उन्हीं से वो मुझे नहीं मिला, तो अब किसी और से वो सुख मुझे नहीं चाहिए बेटी, नहीं चाहिए। तुम दोनों सुखी रहो, रोहित अमित सुखी रहे, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी।
2: माँ जी,
0: सही है या गलत जो भी मैं कर रही हूँ मुझे कर लेने दो, मेरा सुख इसी में है बेटी, मेरा सुख इसी में है।
1: माँ

0: अपने अपने दायरे। अभी आप श्री रमेश उपाध्याय का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और तकनीकी सहायक भगत सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कमला कुमारी चोपड़ा, सुरेंद्र सेठी, शर्मिला मलकानी, सतीश कक्कड़, राजकुमारी शर्मा, राम मैनी, रमेश चंदर और राम अवतार शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोक गीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं भगवती प्रसाद पोखरियाल के स्वर में गढ़वाली लोक गीत।

ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਤ ਕਾਲਾ ਅਰੇ ਨਨ ਨਨ ਬਸੰਤੀ ਹੈ ਰਚੇ ਤੂ ਬਾਨਾ।

बसीरुनी नानी नानी बसंती है गसे तू बाना।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे और इस कार्यक्रम में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत हम लेकर आते हैं। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI, द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर

0: विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: And also infrastructure development that has happened.
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंक

0: आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री KPV ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है।

सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना

ईडन गार्डन्स में होगा ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है मत्स्य पालन से स्वरोजगार और जल संरक्षण। जानकारी दे रहे हैं श्री रविंद्र कुमार।
1: किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्यों से जुड़ी है। हमारे देश में मछली पालन काफ़ी दिनों से प्रचलित है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश के अनेक भागों में एक लघु उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे दूसरे मत्स्य पालक भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। मछली पालन से उत्पादन एवं रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हरित क्रांति एवं सफ़ेद क्रांति के बाद नीली क्रांति का आह्वान किया है, जिससे अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जा सके और लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। उत्तराखंड राज्य का लगभग 80% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या दुर्गम स्थानों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ छोटी छोटी बिखरी हुई जोत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा वर्षा आधारित खेती होने के कारण कृषि उत्पादकता काफ़ी कम है। किसान भाई आज भी परंपरागत रूप से खेती कर रहे हैं, जो कम उत्पादकता के कारण अधिक लाभदायक नहीं रही है। सीमित कृषि योग्य भूमि तथा बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न मांग को पूर्ण करने के लिए मत्स्य पालन एक समाधान के रूप में उभर कर आया है। मत्स्य पालन स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पर्यटन को बढ़ावा देने, कुपोषण का उन्मूलन करने व जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मछली को संतुलित आहार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार हेतु आवश्यक माने गए हैं। मछली में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। मछली के मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन जटिल नहीं होता है तथा अन्य जीवों के मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन की अपेक्षा इसका पाचन जल्दी होता है। मछली में एक विशेष प्रकार की असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिसे ओमेगा 3 पूफा कहा जाता है, जो मछलियों में 25-30% तक तथा अन्य जीवों के मांस में 4-10% तक पाई जाती है। यह वसा हृदय की धमनियों में जमती नहीं है, जो हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह वसा मस्तिष्क व आँखों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वे किस प्रकार मत्स्य पालन को स्वरोजगार का साधन बना सकते हैं। आज के युग में कम लागत व कम समय में अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाई कृषि के साथ साथ कम से कम 100 वर्ग मीटर के मछली पालन तालाबों का निर्माण करें तो कृषि कार्यों के साथ साथ मत्स्य पालन के द्वारा अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार बने तालाबों में निवेश की आवश्यकता कम होती है तथा जल संरक्षण का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। मत्स्य पालन हेतु निर्मित तालाब से आसपास की भूमि में नमी बनी रहती है तथा इसके जल का उपयोग सब्जी एवं फसल उत्पादन में सिंचाई हेतु भी किया जाता है, जिसमें आवश्यक नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटास आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। सामान्यतः तकनीकी ज्ञान के अभाव में किसान भाई एक ही प्रजाति की मछली का पालन करते हैं। यदि मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक को अपनाया जाए

तो एक ही तालाब से तीन गुना तक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। परंपरागत विधि से मत्स्य उत्पादन कम व लागत अधिक होने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न शोधों के द्वारा मिश्रित मत्स्य पालन की तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक के अंतर्गत तालाब के जल की अलग अलग सतहों में विभिन्न प्रकार की मछलियों को एक साथ पाला जाता है। इस तरह एक साथ पाली जाने वाली मछलियां तालाब के प्रत्येक हिस्से में पाए जाने वाले प्राकृतिक भोजन का पूरी तरह उपयोग कर लेती हैं तथा आसपास में एक दूसरे से भोजन के लिए प्रतिद्वंदिता भी नहीं करती हैं, जिससे निश्चित समय में अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर अधिक लाभ लिया जा सकता है। इस विधि में विदेशी कार्प मछलियाँ जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कॉमन कार्प तथा भारतीय मूल की मेजर कार्प मछलियाँ जैसे रोहू, कतला एवं नैन को एक साथ एक ही तालाब में वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। कतला व सिल्वर कार्प पानी की ऊपरी सतह पर उपलब्ध भोजन को ग्रहण करती हैं। रोहू तथा ग्रास कार्प मध्य सतह पर एक साथ रहती हैं। नैन तथा कॉमन कार्प तली पर उपलब्ध सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। मिश्रित मत्स्य पालन हेतु कम से कम 100 वर्ग मीटर तालाब जो कम से कम 1.5 मीटर गहरा होना आवश्यक है। तालाब निर्माण हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाना चाहिए जहाँ दिन भर सूर्य की धूप तालाब में रहे तथा वर्ष भर तालाब में पानी की उपलब्धता हेतु भरोसेमंद पानी का स्रोत हो। तालाब बाढ़ वाली जगह से दूर होना चाहिए। तालाब निर्माण उपरांत तालाब में पानी भर देना चाहिए तथा मत्स्य बीज संचय से लगभग 15 दिन पूर्व 80 से 100 किलोग्राम सड़े गोबर को तालाब में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से तालाब में संचय किए जाने वाले मत्स्य बीज हेतु पर्याप्त प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। मत्स्य बीज संचय एक निश्चित अनुपात में ही किया जाना चाहिए। 3 विदेशी प्रजातियों कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प का संचय 30-40-30 के अनुपात में किया जाना चाहिए। 100 वर्ग मीटर के एक तालाब में 4 से 6 इंच के आकार की लगभग 100 मत्स्य अंगुलिकाएँ संचित की जानी चाहिए। तालाबों में प्राकृतिक आहार के अतिरिक्त मछलियों के अच्छी बढ़वार हेतु परिपूरक आहार अत्यंत आवश्यक होता है। परिपूरक आहार के रूप में सरसों की खल, चावल का कन्ना, गेहूं का चोकर आदि मिलाकर दिया जाता है। ग्रास कार्प मछली को भोजन के रूप में बरसीम, ज्वार, बाजरा आदि दिया जाता है। एक 100 वर्ग मीटर तालाब में आधा किलो प्रतिदिन की दर से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक 3 महीने 2 किलो आहार की वृद्धि करते जाना चाहिए। मछलियों को आहार एक निश्चित समय व स्थान पर ही दिया जाना चाहिए। तालाबों में मत्स्य बीज संचय करने हेतु हेमपुर हेचरी काशीपुर राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र भौर उधम सिंह नगर से प्राप्त किया जा सकता है। 100 वर्ग मीटर तालाब में मत्स्य पालन किए जाने पर आने वाले आय व्यय का लेखा कुछ इस प्रकार होगा। तालाब निर्माण व पानी की आपूर्ति पर लगभग 50,000 तथा तालाब में चूना, गोबर, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार आदि पर वार्षिक लागत लगभग ₹10,000 तक आती है। इस प्रकार एक 100 वर्ग मीटर के तालाब से एक वर्ष में लगभग 100 किलोग्राम तक मछली प्राप्त की जा सकती है जो ₹300 प्रति किलोग्राम की दर से 30,000 की बिकती है। ₹30,000 में से वार्षिक व्यय ₹10,000 को घटाने पर कृषक को शुद्ध ₹20,000 की आय प्राप्त हो जाती है। मत्स्य पालन के साथ साथ यदि किसान भाई उंगली का उत्पादन का कार्य करें तो वे अपनी आय को कई गुणा बना सकते हैं। यदि मत्स्य पालक के पास मत्स्य पालन तालाब के साथ एक और तालाब हो तो उसमें अंगुलिकाओं का उत्पादन कर उन्हें अधिक दामों पर अन्य मत्स्य पालकों को बेचकर और अधिक आय कर सकते हैं। तालाबों में यथासंभव 3 से 4 इंच की अंगुलिका का ही संचय किया जाना चाहिए जिससे उनकी मृत्यु दर कम हो, किंतु व्यवहारिकता में अंगुलिकाएँ मिलना कठिन होता है। इस विधि में 50 से 60 हज़ार जीरा प्रति नाली की दर से संचय की अनुशंसा की जाती है। इसमें स्थानीय मांग के अनुसार अलग अलग प्रजातियों को पाला जा सकता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प एवं सिल्वर कार्प की अंगुलिकाओं का उत्पादन करना लाभकारी होगा क्योंकि ये प्रजातियां यहां आसानी से पाली जा सकती हैं। अंगुलिका उत्पादन का कार्य 3 से 4 माह की अल्प अवधि का होता है जिसमें 1 से 1.5 इंच साइज का जीरा 3 से 4 इंच की अंगुलिका में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार 50% उत्तरजीविता के साथ लगभग 25 से 30 हज़ार अंगुलिकाएँ प्राप्त की जा सकती हैं जो ₹600 प्रति हज़ार की दर से विक्रय करने पर कृषक को 18,000 तक आय प्राप्त हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज संचय किए जाने का सर्वोपयुक्त समय माह मार्च का प्रथम सप्ताह माना गया है। उस समय हैचरियों पर भी मत्स्य बीज उपलब्ध नहीं रहता है। इस समय अंगुलिका उत्पादन का कार्य कर रहे किसान भाई अन्य कृषकों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराकर निश्चित रूप से अच्छी आमदनी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई चाहें तो केवल मत्स्य अंगुलिका उत्पादन का कार्य भी कर अच्छी आय कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन छोटे छोटे तालाबों में किया जाता है, अतः छोटे तालाबों से अधिक लाभ लिए जाने हेतु मत्स्य पालन विविधीकरणी तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। इस तकनीक को समन्वित मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन के साथ साथ अन्य धंधे जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, सब्जी उत्पादन एवं बागवानी आदि कार्य को किया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा तालाब में खाद एवं परिपूरक आहार में 50% तक की कटौती संभव है जिससे मत्स्य पालक के व्यय में कमी आती है। साथ

0: साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, फल फूल बागवानी इत्यादि के उत्पादों से अतिरिक्त आय भी अर्जित की जाती है। कृषि से मत्स्य पालन के अंतर्गत तालाब के बंधों पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, पालक, नींबू, केला, पपीता एवं विभिन्न प्रकार के फूलों का भी उत्पादन किया जाता है। तालाब के पोषक युक्त जल का प्रयोग सब्जियों, फलों आदि की सिंचाई में एवं तालाब की तली में जमा हुए गाद का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। इससे सब्जियों के उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि संभव है। इस प्रकार इस नवीन तकनीकी के द्वारा किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन व अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में विशाल जल संपदा होने के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें राज्य अपनी प्राकृतिक जलधाराओं के कारण मत्स्य आकेट के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सदैव ही आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ की जलधाराओं में विभिन्न प्रकार की मत्स्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें महासीर, ट्राउट एवं असेला आदि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। महासीर एवं ट्राउट मछलियाँ एंगलिंग के माध्यम से आकेट की जाने वाली विश्व प्रसिद्ध एंगलिंग फिश हैं। इनके द्वारा देशी एवं विदेशी एंग्लर्स पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित कर पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। हाल ही में कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय एंगलिंग कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2016 में जनपद चंपावत के पंचेश्वर नामक स्थान पर किया गया, जिसमें देशी विदेशी एंग्लर्स ने प्रतिभाग किया, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम विकसित किए जाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। यदि यहाँ के स्थानीय किसान भाई नदियों अथवा झीलों के आसपास स्थित कुंडों की देखभाल करें और अवैध शिकारमाई से बचाने में सहयोग करें, तो इस प्रकार के कुंडों को एंगलिंग हेतु विकसित कर मत्स्य क्रीड़ा के उपयोग में लाकर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तथा जल संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मत्स्य विभाग द्वारा किसान भाइयों के लिए विभिन्न लाभप्रद योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 100 वर्ग मीटर का कच्चा तालाब निर्माण किया जाता है, जिस पर विभाग द्वारा ₹42,000 का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह ब्लू रिवॉल्यूशन नील क्रांति योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके अंतर्गत 100 घन मीटर तालाब निर्माण हेतु 1,00,000 की लागत मानते हुए 90,000 का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा 10% धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। इसी तरह दुर्घटना बीमा योजना, जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता पर 2,00,000 तथा आंशिक स्थायी अपंगता के लिए 1,00,000 तथा किसी दुर्घटना होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ₹10,000 की बीमा राशि से आच्छादित किया जाएगा। उक्त बीमा योजना अंतर्गत लाभार्थी को किसी भी प्रकार का कोई अंश नहीं देना पड़ता।
1: मत्स्य पालन से स्वरोजगार और जल संरक्षण, खेती की बातें कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रविंद्र कुमार से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनिएगा पंडित कैवल्य कुमार गुरव का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे जगदीश फुलारी। युवा साथी युवावाणी सुनते हैं संध्या 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा सिक्किम दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, खेल जगत और आज का इतिहास भी श्रोता सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांति के साथ सप्रवास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही सुनिएगा वार्ता सभी को सम्मान सुरक्षा, सभी को सम्मान सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार। वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पांडे। संध्या 6:41 पर भक्ति

संगीत प्रसारित होगा। आज अनूप जलोटा और अनुराधा पोडवाल के गाए भजनों का आनंद आप ले सकेंगे। शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें, पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट और गहत की खेती विषय पर होंगी। चर्चा सुनिएगा, मृदा की जांच क्यों करवानी चाहिए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कृषि में जैविक खादों का प्रयोग, इस विषय पर कृषक बिपिन चंद्र तिवारी से कृष्णा लटवाल की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 7:40 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। इसके अलावा रात 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। श्रोता सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रस सुनेंगे रात्रि 8 बजे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर, ग्राम विनायक थालना थल से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी, पत्नी स्वर्गीय हर गोविंद, दिनांक 20 अप्रैल 2026 से ग्राम गोखरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता हैं। उनका कद 5 फीट 11 बदन, चेहरे का रंग गेहुआ। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज, नीली साड़ी, गले में माला और हवाई चप्पल पहने हुई थी। इनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचना संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार हैं मशहूर अभिनेत्री, गायिका और मॉडल सोनल चौहान।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत की ग्लैमरस बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार हैं सोनल चौहान। आज 16 मई इनका जन्मदिन है, तो सोनल चौहान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम श्रोताओं को ये भी बता दें कि 16 मई 1985 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपका जन्म हुआ। सोनल ने अपनी खूबसूरती और मेहनत के दम पर मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड और फिर साउथ सिनेमा तक अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्मों में आने से पहले सोनल चौहान ने साल 2005 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब अपने नाम किया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी और इसी उपलब्धि ने उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड के उनके दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापनों और म्यूज़िक एल्बम्स में काम करना शुरू किया।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो श्रोताओं, सोनल चौहान की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2008 में आया जब उन्हें फिल्म जन्नत में काम करने का सुअवसर मिला। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे इमरान हाशमी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और सोनल रातों रात चर्चा में आ गई। जन्नत में सोनल की सादगी और खूबसूरती को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। खासकर इस फिल्म के गाने भी दर्शकों के बीच बेहद सराहे गए।

तो श्रोताओं, सोनल चौहान की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के गार्गी कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में की थी। उनका सपना पत्रकारिता की दुनिया में अपना भविष्य बनाना था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें पत्रकारिता में गहरी दिलचस्पी थी और वो पढ़ाई भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। अगर उनकी हम फिल्मों की बात करें तो जन्नत, जो कि मशहूर फिल्म रही, उसके अलावा उन्होंने बुढ़ा होगा तेरा बाप, 3G, लेजेंड, पल्टन, द घोस्ट, F3, फन एंड फ्रस्ट्रेशन जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। सोनल हिमेश रेशमिया के बेहद चर्चित एल्बम आपका सुरूर में भी नजर आई थी। इस म्यूजिक वीडियो से भी उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली थी। और वो सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें संगीत में भी बेहद रुचि है। फिल्म 3G में उन्होंने मशहूर सिंगर KK के साथ कैसे बताऊं गाना खुद भी गाया था।

एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। और आज फनकार थीं मशहूर अभिनेत्री, गायिका और मॉडल सोनल चौहान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्में की

सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अंजु पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत में कई फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हम आज भी याद करते हैं तो एक पूरा मंजर हमारे सामने उस फिल्म का आ जाता है। जैसे याद कीजिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म को आखिर कौन भूल सकता है भला। इस फिल्म की कहानी से लेकर संगीत, सभी कुछ आज भी दर्शकों को रोमांचित करते हैं। पर्दे पर इस कहानी को बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित करने का श्रेय जाता है बॉलीवुड के बेहद मशहूर निर्माता, निर्देशक और राइटर धर्मेश दर्शन को। और आज श्रोताओं, धर्मेश दर्शन का जन्मदिन भी है, तो उन्हें हमारे कार्यक्रम की ओर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन पर। और सूरज बड़जात्या, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और संजय लीला भंसाली की ही तरह कम उम्र में

अपना शानदार करियर शुरू किया था। धर्मेश दर्शन ने साल 1993 में फिल्म लुटेरे से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त उनकी आयु मात्र 24 साल थी। उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसे लिखा भी, और इसके अलावा इस फिल्म के डायलॉग्स कमलेश पांडे ने लिखे। इस फिल्म को धर्मेश दर्शन के बड़े भाई सुनील दर्शन ने प्रोड्यूस किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में सनी देओल और जूही चावला मुख्य किरदार में नजर आए थे। तो इस फिल्म का एक गाना।

तो श्रोतों, धर्मेश दर्शन का जन्म 16 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। और पहली फिल्म की बात हमने आपसे की लुटेरे की, और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिस फिल्म ने इन्हें बहुत चर्चित किया। वो फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, जो कि साल 1996 में प्रदर्शित हुई। जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई उस समय धर्मेश दर्शन मात्र 28 साल के थे। बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने इतिहास रच दिया। ये धर्मेश दर्शन के करियर की दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और आमिर खान की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, और ये फिल्म

साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, 90 के दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और साथ ही भारतीय सिनेमा के 100 साल में ये फिल्म चौथी बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने निर्देशन की दुनिया में धर्मेश दर्शन की काबिलियत को साबित कर दिखाया और इस फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इस फिल्म का संगीत भी बेहद उत्कृष्ट था और इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही सुने जाते हैं जितने उस दौर में।

सुधों फिल्म राजा हिंदुस्तानी की अपार सफलता के बाद धर्मेश दर्शन ने 4 साल का ब्रेक लिया और साल 2000 में उन्होंने 2 फिल्मों के साथ वापसी की। इन फिल्मों का निर्देशन और लेखन उन्होंने खुद किया। इनमें पहली फिल्म थी मेला, जिसमें आमिर खान और उनके रियल ब्रदर फैजल खान की जोड़ी देखने को इस फिल्म में मिली। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। दूसरी फिल्म कौन सी थी ये हम आपको बताएंगे इस फिल्म का यानी मेला फिल्म का गाना सुनने के बाद।

तो श्रोताओं, साल 2000 में ही जो दूसरी फिल्म का जिक्र मैंने किया था वो फिल्म थी धड़कन, और ये फिल्म ज़बरदस्त हिट साबित हुई। ये फिल्म उस साल की यानी साल 2000 की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, और इस फिल्म ने धर्मेश दर्शन को रोमांटिक निर्देशक का तमगा भी दिलाया। साथ ही अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी और साथ में सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में थे। इन सभी की किस्मत भी इस फिल्म ने चमका दी, और बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्टोरी की कैटेगरी में इस फिल्म की झोली में कई अवार्ड्स आए।

साल 2005 में धर्मेश दर्शन की एक और फिल्म आई बेवफा। ये फिल्म बीआर चोपड़ा की क्लासिक फिल्म गुमराह की रीमेक थी और अपने बेहतरीन संगीत और स्टारकास्ट की वजह से ये फिल्म भी सफल साबित हुई।

सुनो, 2006 में धर्मेश दर्शन की एक और फिल्म आई आपकी खातिर, और इस फिल्म का संगीत बेहद सुरीला रहा, और भले ही इस फिल्म ने ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन ये फिल्म अपने आप में मशहूर रही।

तो श्रोताओं, आपकी खातिर जिस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, ये धर्मेश दर्शन की निर्देशित आखिरी फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से फिल्म जगत से ब्रेक ले लिया। धर्मेश दर्शन ने अपने करियर में 7 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें राजा हिंदुस्तानी और धड़कन, इन दोनों फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की थी। शेष 5 फिल्में लुटेरे, मेला, हाँ मैंने भी प्यार किया, बेवफा और आपकी खातिर फिल्में ज़्यादा कामयाब नहीं रहीं, लेकिन एक अच्छी खासी पहचान इन फिल्मों के ज़रिए भी धर्मेश दर्शन की बनी। तो श्रोताओं, आज सदाबहार फिल्मी गीत का सफ़र यहीं तक। एक बार फिर से जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक धर्मेश दर्शन को हम उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज का सदाबहार फिल्मी गीत का सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं। अंजू पांगती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है। अब आप कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी

0: चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गोस्केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सायंकालीन सभा के आरंभ में लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए जगदीश फुलारी का गाया कुमावनी लोकगीत।

सब नर नारी अलमाल बजारा ओ काजल कोटिक दरिया लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाल बजारा ओ काजल कोटिक दरी लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाल बजारा ओ काजल

जगदीश फुलारी की गई इसी छपेली के साथ हमारा आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले इस सभा के शेष प्रसारण। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में पंडित केवल कुमार गुरव का ख्याल गया है। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात में चर्चा होगी सिक्किम दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। उत्तरायण शाम 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज चर्चा होगी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की, शांति के साथ सप्रवास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और सुनिएगा सभी को सम्मान सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती ज्योति पांडे। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे शाम 7:00। आज की बातें में चर्चा होगी पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट और गहत की खेती, साथ ही सुनिएगा कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। कृषक विपिन चंद्र तिवारी से कृष्णा लटवाल की भेंट वार्ता। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, सब रस का लुत्फ उठाइएगा। रात्रि 8:00 और फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में, और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर संगीत का नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात्रि 10:00 रविवासरीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम सुनिएगा, 6:40 पर आज की बात, सुबह 6:50 पर विविधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, सुबह 7:10 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस, सुबह 7:45 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे उच्च रक्तचाप को कैसे रखें नियंत्रण विषय पर डॉक्टर विशाल शर्मा से संजय जोशी की भेंट वार्ता। सुबह 8:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका, महिलाएं अपना कार्यक्रम घर संसार सुनेंगी तिनके 12:30 पर, जिसमें चर्चा होगी जागरूकता बढ़ाता आकाशवाणी और महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या। दिन के 1:30 पर आप सुनेंगे विनोद कुमार का लिखा रूपक कहानी ऐसे बनती है। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दिन के 2:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे खुमानी आड़ू पुलम की बागवानी में रोग और नियंत्रण, जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल कुमार। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, आज की बात में सुनिएगा डिजिटल क्षेत्रों में लैंगिक समानता और विश्व हाइपरटेंशन दिवस, साथ ही वार्ता सुनिएगा डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता विषय पर, वार्ताकार होंगी गायत्री कनवाल। उत्तरायण में आप सुनेंगे बुराश कार्यक्रम, कुमावनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का जो फरमाइशी कार्यक्रम है ये शाम 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा, और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरक के प्रयोग का महत्व, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा और संचालन करेंगे श्री संजय कुमार आर्य। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण की। और अब एक विशेष सूचना, कार्यक्रम

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विनायक थाना थल जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय हरगोविंद दिनांक 20 अप्रैल 2026 से ग्राम गोकरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता हैं। उनका कद 5 फीट है, चेहरे का रंग गेहुआ है। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज, नीली साड़ी, गले में माला और हवाई चप्पल पहने थी। इनकी मानसिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज यानी 16 मई को हम मना रहे हैं सिक्किम दिवस। आज ही के दिन वर्ष 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। छोटा सा ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनुशासन, स्वच्छता और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी देश में खास पहचान रखता है। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, झीलें, बौद्ध मठ और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिक्किम की संस्कृति में लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय की झलक दिखाई देती है। यहाँ की पारंपरिक परिधान, लोक नृत्य और संगीत लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। सिंघी छम नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। सिक्किम का प्रसिद्ध रोमटेक मॉनेस्ट्री बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक शांति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की सोंगमू लेक अपनी खूबसूरती और बर्फीली नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य पर्यावरण संरक्षण में भी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। दोस्तों सिक्किम भारत का पहला पूर्व जैविक राज्य है। यहाँ खेती बिना रसायन खादों के किए जाती है। दोस्तों सिक्किम हमें सिखाता है कि अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाकर ही विकास का सही रास्ता तय किया जा सकता है। तो आइए हम भी अपने देश की विविध संस्कृतियों का सम्मान करें और प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प लें।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, सिक्किम दिवस के साथ साथ आज ही के दिन हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, लेकिन आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया रोशनी का इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये जानने के लिए आपको सुनाते हैं महिमा रावत के विचार, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं।
3: नमस्कार साथियों, मैं महिमा रावत। आज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के अवसर पर हम सबके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि प्रकाश केवल हमारे आसपास उजाला फैलाने का माध्यम नहीं, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान और तकनीक की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। आज की दुनिया में मेडिकल साइंस, इंटरनेट, स्पेस टेक्नोलॉजी, पर्यावरण संरक्षण और इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में लाइट टेक्नोलॉजी तेजी से बदलाव ला रही है। यही कारण है कि यूनेस्को हर साल इस दिन को मनाकर लोगों को प्रकाश विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूक करता है। दोस्तों, आजकल जिस नई तकनीक की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह है लाईफाई, यानी लाइट फिडेलिटी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंटरनेट डेटा को रेडियो वेव्स की जगह एलईडी बल्ब की रोशनी के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। आने वाले समय में हमारे घर के साधारण बल्ब ही इंटरनेट राउटर का काम कर सकते हैं। यह तकनीक तेज, सुरक्षित और कम रेडिएशन वाली मानी जा रही है। इसके साथ ही लाइट टेक्नोलॉजी पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। वैज्ञानिक सोलर पैनल्स को अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि सूरज की रोशनी से स्वच्छ ऊर्जा तैयार की जा सके और प्रदूषण कम हो। वहीं फोटो कैटालिसिस जैसे आधुनिक तरीकों के जरिए बिना हानिकारक रसायनों की दवाइयाँ और ज़रूरी रासायनिक पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भविष्य ऑप्टिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी का माना जा रहा है। आज जहां डेटा इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ट्रांसफर होता है, वहीं आने वाले समय में प्रकाश कण यानी फोटॉन्स डेटा को लाइट की गति से आगे बढ़ाएंगे। इससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी और स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। मेडिकल साइंस में भी प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज संभव हो पा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक डॉक्टरों को शरीर के अंदर की स्पष्ट तस्वीरें देखने में मदद करती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी विशेष प्रकार की लाइट थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं के लिए यह क्षेत्र भविष्य का सुनहरा अवसर लेकर आया है। क्लोनोटेक्स, लेजर इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से रिसर्च और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसरो, DRDO और कई बड़ी टेक कंपनियां इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। इसलिए अगर आपको विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन में रुचि है तो लाइट टेक्नोलॉजी आपके लिए भविष्य का एक शानदार करियर बन सकता है। धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महिमा रावत के विचार प्रकाश विज्ञान पर। आशा करते हैं आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। अब बढ़ते हैं आज के विशेष अंक खेल जगत की। भारतीय वेटलिफ्टर अजीत नारायण ने एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 71 किलोग्राम श्रेणी में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीते। यूनिटी कप फुटबॉल के लिए संभावित टीम में होंगे 4 गोलकीपर। लंदन में 26 से 30 मई तक होने वाले यूनिटी कप के लिए 28 सदस्यीय प्रारंभिक टीम घोषित कर दी गई है। भारतीय विश्व खिलाड़ी अपर्णा ने मकाऊ में चल रहे 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं की 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिए। भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग में के 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रायल से छूट दी गई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट युगांडा के बीच 5 वर्षीय MOU होने जा रहा है। इस साझेदारी के तहत युगांडा की टीम 18 से 30 मई तक मुंबई में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। दोस्तों ये था हमारा खेल जगत। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर एक गीत के साथ।

दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। आज ही के दिन वर्ष 1929 में ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य था फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिभावान कलाकारों को सम्मान मिले। कैलिफोर्निया के रूजवेल्ट होटल में करीब 250 लोगों की उपस्थिति में इस समारोह का आयोजन किया गया। डायरेक्टर विलियम वेलमैन की फिल्म विंग्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। इस समारोह में कुल 12 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए गए। शुरुआत में इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता था। 1939 में इसे बदलकर ऑस्कर कर दिया गया। आज फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर कलाकार के लिए ऑस्कर जीतना एक सपने जैसा है। आज ही के दिन वर्ष 2013 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार

क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल निकालने में सफलता मिली। आज ही के दिन वर्ष 2006 में न्यूजीलैंड में 37 वर्षीय मार्क एंजेलिस आर्टिफिशियल पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। आज ही के दिन वर्ष 1960 में भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परियार, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, प्रज्ञा एंड देवानंद। दोस्तों इसी क्रम में जान लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। इसी के साथ दोस्तों सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहरात नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं आपू लोगों कार्यक्रम उत्तरायण में जमे बातचीत तक दगर आपू लोगों को मनोरंजन ल करी जा। तो श्रोताओं कार्यक्रम में शुरुआत कर लेनो थोड़ बातचीत दगर। श्रोताओं मन की एक सामाजिक प्राणी छू और मन की जीवन समाज में अन्य मनखियों दगर मिलजुल बेर रूणल पुरमानी जा। ये मनखियों बीच में प्रेम भाईचारा सहयोग और आपसी सम्मानिक भावना छू तब समाज में शांति और खुशहाली बढ़ी रहे। लेकिन आज एक बखत में दुनिया अनेक समस्याओं घिर रो। कई युद्ध और हिंसाक वातावरण छू तो कई जाति धर्म भाषा और विचारों के आधार पर भेदभाव और संघर्ष देखू मिलनो। यही परिस्थितियों में मनखियों बीच सहनशीलता एकता और मानवता भावना के बढ़ावा देन बहुत जरूरी है गो। यही उद्देश्य हर साल 16 मई हूँ शांति दगर सहजीवनक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जा। यह दिवस दुनिया के सभी मनखियों के यह संदेश दियो कि अलग अलग संस्कृति अलग अलग धर्म और अलग अलग विचारों के बाद ले हमको एक दोहर दगा प्रेम और सम्मानपूर्णक रूण चैन। ये दिवस के मनोणक मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति भाईचारा सहनशीलता और सहयोगिक भावना के मजबूत करण छू ताकि सभी लोग बिना कोई भेदभाव एक शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत कर सको। श्रोताओं संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस की शुरुआत विश्व में शांति और सहजीवनक भावना के बढ़ावा दिड़क उद्देश्य शुरू करी जा रहे। संयुक्त राष्ट्रक मानन छू कि अगर दुनिया के सभी देश और मन की एक दोहर दगर सहयोग और सम्मानक भावना दगर रूनी तो विश्व में स्थायी शांति स्थापित करी जा सके। ये दिवस हमको यो याद दिलो कि हिंसा और घृणा कभी ले कोई ले समस्या का समाधान नहीं कर सकन। समस्याओं का समाधान केवल बातचीत समझदारी और सहयोगल संभव है सको। श्रोताओं सह अस्तित्व का अर्थ छो सभी मनखी बिना कोई भेदभाव एक दगे प्रेम पूर्वक रो। हमर समाज में अनेक धर्म अनेक भाषा अनेक संस्कृति और परंपरा छिन। ये विविधता हमर सामाजिक सबु हबेर ठुल विशेषता छू। अगर मन की यो भिन्नताओं के स्वीकार कर बेर एक दोहरक सम्मान करनी तो समाज में एकता और भाईचारा बढ़ी जो। लेकिन मन की अपन विचारों के श्रेष्ठ मानबेर दोहरूक अपमान करण लगनी तब विवाद और संघर्ष उत्पन्न होनी। यक लीजिए समाज में शांति बढ़ाई रखना लीजिए सहनशीलता और समझदारी बहुत जरूरी छू। श्रोताओं आजक बखत में दुनिया कई देशों में युद्ध आतंकवाद और हिंसा कारण लाखों मन की प्रभावित होनी। युद्ध कारण लाखों मन की मृत्यु है जय। यह कदगे नंतनुक भविष्य ल अंधकारमय है जा। समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण फैल जा। यस बखत में शांति दगे सहजीवनक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमको यो प्रेरणा दियो कि हमको हिंसाक बाट के छोड़ बेर शांति और मानवता बाट के अपनून चैन। अगर सभी मन की प्रेम करुणा और सहयोग भावनाल काम करनी तो दुनिया का और ज़्यादा सुरक्षित और सुंदर बढ़ाई जा सकूँ। श्रोताओं शांति दगह सहजीवनक अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि पूर्व मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दियो। यह दिवस हमको यह सीखूँ कि सभी मन की सम्मान छिन और हमको मिलजुल बेर प्रेम सहयोग और भाईचारा दगह जीवन बितूँ चैन। शांति और सहजीवनक एक सुखी सुरक्षित समाजक नींव छू। अगर हम अपन जीवन में यो मूल्यों के अपनूनू तो यो न केवल हमारे

समाजक बल्कि पूर्व विश्वक शांति और खुशहाली भर सकूं। यही यो दिवसक वास्तविक उद्देश्य और सच्च संदेश छू। श्रोताओ, यो दिवस हमको यो सीखो कि केवल अपन लि जीना बल्कि दोहरूक सुख और सम्मानक ध्यान रखन ले मानवता कर्तव्य छू। सहजीवनक भावना समाज के मजबूत बढ़े और मनखियों बीच प्रेम और विश्वास बढ़ो। अगर हर मनखी अपन व्यवहार में दया, सहयोग और सहनशीलता के अपनूनी तो दुनी ज्यादा शांतिपूर्ण और सुंदर बन सके। श्रोता, हमको यह दिवसक महत्व के समझ बीर अपन जीवन में शांति, एकता और सहजीवनक भावना के अपनू चैन, ताकि ऊनी वाल पीढ़ियों के एक बेहतर, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण समाज मिल सको।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ हगेलापु लोगों का सुनो, शांति दगय सहजीवनक अंतर्राष्ट्रीय दिवसक अवसर पर यो वार्ता जैक विषय छू सबे के सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन जीनक अधिकार। और वार्ता का अर्चिन श्रीमती ज्योति पांडे।
2: आज के समय में संसार अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। कहीं युद्ध और हिंसा है तो कहीं भेदभाव, गरीबी और असमानता। लाखों लोग अपने घर, गांव और देश छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। कोई रोजगार की तलाश में प्रवास करता है, कोई शिक्षा के लिए, तो कोई युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। ऐसे समय में शांति के साथ सप्रवास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानवता, भाईचारे और सहयोग का महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दिवस हमें सिखाता है कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को सम्मान, सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार है। शांति का अर्थ केवल युद्ध का ना होना नहीं है, शांति का वास्तविक अर्थ है मन की संतुष्टि, प्रेम, सहयोग, सहनशीलता और आपसी सम्मान। जब समाज में लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तभी सच्ची शांति स्थापित होती है। वहीं सप्रवास का अर्थ है सभी लोगों का साथ मिलकर आगे बढ़ना, चाहे वे किसी भी भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र से जुड़े हों। जब प्रवास करने वाले लोगों को नया समाज अपनाता है और उन्हें समान अवसर देता है, तब समाज में एकता और सौहार्द बढ़ता है। आज दुनिया में बड़ी संख्या में लोग प्रवासी जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों या शहरों में जाते हैं, जबकि कुछ लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ते हैं। युद्ध, आतंकवाद, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण हैं।

ऐसे लोगों को नए स्थान पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भाषा, संस्कृति, रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यदि समाज उनके प्रति प्रेम और सहयोग का व्यवहार करें तो उनका जीवन आसान और सुरक्षित बन सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। यहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग मिलकर रहते हैं। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, जिसका अर्थ है पूरा संसार एक परिवार है। यही भावना शांति और सप्रवास की मूल भावना है। भारत में सदियों से विभिन्न स्थानों से आए लोगों को अपनाया गया है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को समृद्ध बनाया और समाज के विकास में योगदान दिया। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर कुमाऊं और गढ़वाल में सप्रवास और सहयोग की परंपरा बहुत पुरानी है। पहाड़ों में लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। गांव में यदि किसी परिवार पर संकट आता है तो पूरा गांव उसकी सहायता करता है। शादी, ब्याह, खेती और त्योहारों में लोग मिलकर काम करते हैं। यह सामूहिकता और भाईचारा समाज में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान दौर में जब दुनिया संघर्षों, असमानता और शरणार्थियों की समस्याओं से जूझ रही है, शांति के साथ सप्रवास एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है। यह सिर्फ सीमाओं को पार करना नहीं बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण पुनर्वास सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। शांति और सप्रवास का संबंध, शांति का मतलब केवल युद्ध ना होना नहीं बल्कि एक ऐसा वातावरण होना है जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस कर सके। प्रवासी लोग अक्सर युद्ध, गरीबी या हिंसा से बचकर दूसरे स्थानों में या दूसरे देशों में शरण लेते हैं। शांति के साथ सप्रवास का अर्थ यह भी है कि उन्हें ना केवल शरण मिले बल्कि सम्मान, कानूनी और सुरक्षा और मानवीय अधिकार भी मिले। हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में जीने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। जब प्रवास सुरक्षित होता है तो यह विकास का अवसर बन जाता है। सतत विकास लक्ष्य 2026 के लिए विश्व शांति का फोकस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर है, जिसमें समानता, गरीबी को कम करना और न्याय शामिल है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्वक सहजीवन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो मतभेदों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने की सीख देता है। 2024 और 2025 में शांति की संस्कृति का संवर्धन मुख्य विषय था, जो आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। शांति के साथ सप्रवास एक न्यायसंगत और सुरक्षित विश्व के लिए अनिवार्य है। जब हम अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हैं, तभी हम सही मायनों में शांति की स्थापना करते हैं। हमें यह याद रखने की भी आवश्यकता है कि शांति की शुरुआत हमारे भीतर और हमारे छोटे छोटे कार्यों से होती है। हमें एक अहिंसक और संतुलित विश्व के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस विशेष रूप से 2026 में शांति के साथ प्रवासन के संदर्भ में एक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। शांति के साथ प्रवासन का यहाँ यह अर्थ भी है कि लोगों को सुरक्षित, व्यवस्थित और मानवीय तरीके से स्थानांतरण, जहाँ उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जाए। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का एक मुख्य केंद्र प्रवासियों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना भी है। प्रवास का मूल कारण ही अक्सर सुरक्षा, स्थिरता और बेहतर भविष्य की तलाश होती है। जब प्रवासन अच्छी तरह से प्रबंधित होता है तो यह विकास, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का कारण बनता है। 2026 के संदर्भ में प्रवासियों, विशेषकर कमजोर समूहों जैसे बच्चे और महिलाओं को एक बोझ के रूप में नहीं बल्कि मानवीय आधार पर एक संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए मेजबान समुदायों में प्रवासियों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार्यता जरूरी है। हर प्रवासी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।

0: ये चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। युद्ध और संकट से भाग रहे लोगों को तत्काल सहायता और शरण मिलना शांति के साथ प्रवासन का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एकता और विकास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय 2026 में यह संदेश दे रहे हैं कि प्रवासन हमारे साझा भविष्य का निर्माण करता है। जब प्रवासी और स्थानीय समुदाय शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। शांति के साथ प्रवासन का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया का निर्माण भी है जहां हर व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ रह सके। 2026 में यह हमारे साझा उत्तरदायित्व को याद दिलाता है कि हम प्रवासियों के योगदान का सम्मान करें और उन्हें समावेशी समाज का हिस्सा बनाएं। आज के आधुनिक युग में तकनीक और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ा भी है और कई बार दूर भी किया है। छोटी छोटी बातों पर विवाद और नफरत फैलना आम हो गया है। लोग बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाने लगते हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम संयम और समझदारी से काम लें। हम ऐसे शब्द और व्यवहार अपनाने चाहिए जो समाज में प्रेम और शांति को बढ़ावा दें। विद्यालयों और परिवारों की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को बचपन से ही मानवता, सहनशीलता और सहयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और समाज में शांति स्थापित करने में योगदान देंगे। शिक्षक और अभिभावक बच्चों के पहले मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्रेम, समानता और भाईचारे का महत्व समझाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विश्व में शांति और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि शांति और सह अस्तित्व मानव जीवन के लिए कितने आवश्यक है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना करें और सभी के साथ समान व्यवहार करें। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। पहाड़ों की हरियाली, नदियों का कलकल बहता जल, पक्षियों की मधुर आवाज और स्वच्छ वातावरण मन को शांति प्रदान करते हैं। आज पर्यावरण संरक्षण भी शांति से जुड़ा विषय बन चुका है। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन संतुलित रहेगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि शांति के साथ सहप्रवास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि मानवता और भाईचारे का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि संसार में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रेम, सहयोग और सहनशीलता की भावना अपनाएं तो समाज में शांति और खुशहाली स्थापित हो सकती है। हमें अपने व्यवहार से यह प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन मिले, तभी एक सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व का निर्माण संभव होगा।
1: श्रोताओं, अल्लाह पुलोगु सुना सबै के सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवनक अधिकार विषय पर वार्ता वार्ताकार जी श्रीमती ज्योति पांडे।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ हगिल सुनु आपु लोगों के सीमा अनिल सहगल और इनर दगड़ियों स्वर में गाई यो गढ़वाल लोकगीत।

श्रोताओ, अल्लाह पुलो गुल सुना सीमा अनिल सहगल और इनर दगड़ियुक स्वर में गाई यो गढ़वाल लोकगीत। श्रोताओ, जब रत्ती सूरज एक पहल किरण धरती पर पड़े, तब चारों तरफ नई उत्साह और नई ऊर्जा फैल जाए। प्रकाशक प्रकृति ऊ अनमोल उपहार छू, जैक बिना जीवनक कल्पना लय नहीं करी जा सकन। ये केवल अंधकार के दूर करनक माध्यम हेतु, बल्कि ज्ञान, आशा, प्रकृति और सकारात्मक प्रतीक लवानी जा। मनखीक जीवन में प्रकाशक महत्व पहली बखत बटी रह रो। सूरजक रोशनील धरती पर जीवन संभव छू। बोठ डाओ पशु पक्षी और मनखी सब कोई न कोई रूप में प्रकाश पर निर्भर रुनी। यही कारण छू कि पूर्व विश्व में 16 मई हूँ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाई जा। श्रोताओ, ये दिवसक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा करी गई। ये दिन के मनोरक मुख्य उद्देश्य मनखियों के प्रकाश और यैग दगत जुड़ी वैज्ञानिक तकनीकों महत्व बार में जागरूक करण छू। और यो दिन के मनोरक लीजिए 16 मई तारीख यैग लीजिए चुनी गई, किले की 16 मई 1960 ही हूँ वैज्ञानिक थियोडर मैमनल दुनिक पहल सफल लेजरक प्रदर्शन करो। ये खोज विज्ञानक क्षेत्र में एक ठुल उपलब्धि मानी जाए। आज लेजर तकनीकी उपयोग चिकित्सा, संचार, उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान जस अनेक क्षेत्रों में करी जानो। श्रोताओ, मनखी जीवन में प्रकाशक महत्व बहुत व्यापक छू। अगर सूरजक प्रकाश नहीं हो तो धरती पर जीवन समाप्त है सकूं। पौधों के खन बढ़ोनक लीजिए सूरजक प्रकाश एक आवश्यकता है। मनखी शरीर के लिए स्वस्थ रोनक लीजिए सूरजक किरणों ऊर्जा मिले। पहली बखत में मनखी दी जलबेर, लालटेन जलबेर और मसालक सहारल अपन जीवन बितूछी। लेकिन विज्ञानक प्रगति दगे लाइट और आधुनिक प्रकाश उपकरणों का विकास हो। आज घरों में, अस्पतालों में, कार्यालयों में और कारखानों में प्रकाशक कारण काम करण आसान है गो। श्रोताओ, आजक बखत में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रकाशक उपयोग तेजिल बढ़नो। दूर संचार व्यवस्था में प्रकाश तंतु तकनीकी उपयोग करी जा। जेल संदेश और सूचना बहुत तेज गतिल एक जग बटी दोहर जग तक पहुंच जानी। चिकित्सा क्षेत्र में लेजरक माध्यमल आँखों शल्य चिकित्सा और कई प्रकारक उपचार करनी जानी। उद्योगों में अलग अलग मशीन और उपकरणों में प्रकाश तकनीकी उपयोग हों। यो प्रकारल प्रकाश आधुनिक जीवनक एक महत्वपूर्ण आधार बन गो। श्रोता, हमारे भारतीय संस्कृति में प्रकाश के सदैव अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जा। हमारे देशक परंपराओं में, धार्मिक मान्यताओं में और त्यारों में प्रकाशक विशेष स्थान दिखाई दियो। दीपावली त्यार ये सबो हवे ठूल उदाहरण छू, जके अन्यर पर उजाऊ और बुराई पर अच्छाई विजय रूप में मनाई जा। केवल दिवाली न बल्कि कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूज पाठों में ले दी जलूड़क परंपरा छू। श्रोताओ, आज पूर्व दुनी ऊर्जा संकट और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना, बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक उपकरणों कारण बिजली खपत लगातार बढ़ती जाने, यस बखत में सौर ऊर्जा जस स्वच्छ और प्राकृतिक ऊर्जा का महत्व और ज्यादा बढ़ जा। सूरजक प्रकाश हमको बिना कोई प्रदूषणक ऊर्जा प्रदान करो। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनखियों के ऊर्जा संरक्षण करनक और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करनक प्रेरणा दियो। अगर हम बिजली बचत करनो और पर्यावरणक प्रति जागरूक रहनो तो ऊनी वाल पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य बढ़ाई जा सकूँ। श्रोताओ, यो दिवस केवल एक वैज्ञानिक दिवस नहीं बल्कि यो मनखी जीवन विज्ञान ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा दगत जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवसर छू। यो हमको प्रकाशक महत्व का समझूनक और वैक सही उपयोग द्वारा समाज और देशक विकास में योगदान देनक प्रेरणा दियो। यक दगत सौर ऊर्जा जैसा स्वच्छ और प्राकृतिक ऊर्जा का अपने बीर हम अपन पर्यावरण के सुरक्षित रखने में अपन योगदान ले सकनों।

श्रोताओं, अल्लाह पुलोगुल सुनो पहला सिंह मेहराग स्वर में गाई यो कुमाऊनी लोकगीत। और श्रोताओं, जाना जाना अब आप लोगों का सुनो कल्याण बोराक स्वर में गाई यो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, अल्ला पुलोगुल सुनो कल्याण बुराग स्वर में गई यह कुमाऊनी लोकगीत। यकदग श्रोताओं, अब बखत है गो आजक उत्तरायण कार्यक्रम के संपन्न करनक। भो आपुलोगुदग फिर भेट हेल, तब तक लीजिए मनीषा मेहरा कदियो आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:28 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती और चंपावत पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल।

0: बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती और चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब की पावन धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, वहां महाराणा प्रताप जैसे महान राष्ट्रनायक का स्मरण करना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायी गाथा है, जो आज भी हर भारतीय को ऊर्जा और गौरव से भर देती है। उन्होंने थारू समाज की परंपराओं, लोकगीतों, लोक नृत्यों और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को उत्तराखंड की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए योजनाओं को व्यवहारिक और सरल बनाया जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, संचार और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।
1: पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, उस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी ऐसे जोन है जहां बरसात में आपदा के समय में जहां पर स्लाइड्स आते हैं, उनके रख रखाव को किस प्रकार से करना है, उसकी तैयारी करनी है। आपदा की तैयारी करने के लिए वो सबको निर्देश दिए। सभी विभागों को कहा गया और सभी से कहा गया है कि जनता के जो समस्याएं हैं, जो आम जन की समस्याएं, उसको सब लोग गंभीरता से लिया जाए। अगर लोगों की समस्याओं को जो भी विभाग गंभीरता से नहीं लेगा, उसके बारे में सख्त से कार्रवाई की जाए।
0: टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आज चंबा विकासखंड की बमुंडपट्टी स्थित लावाधार गांव में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग एक पुरानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से फसलों के उत्पादन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में चयनित खेतों में नियमित रूप से क्रॉप कटिंग कर कृषि उत्पादन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है।
2: एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा काफ़ी पुराना एक हमारी विधि है, जैसे हम लोग जो एक खेत होता है उसकी एक्चुअली एवरेज यील्ड क्या है, और उस एक खेत की एवरेज यील्ड से निकाल के जब हम डिफरेंट जगह या रैंडमली हम लोग पूरे जिले में खेत सिलेक्ट करते हैं, तो उसे पूरे एक जिले की और ऐसे ही हर जिले की निकाल के पूरे प्रदेश की हर हमारी खेत भूमि है कितनी उपजाऊ है, उसका यील्ड कितना है, उस हिसाब से एक मानक निकल के आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है फॉर प्लानिंग, होता है कि हमारे जो खेतों की उपजाऊ वैल्यू है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि वो डिक्रीज हो रही है, उसके क्या कारण है, इंक्रीज हो रही है तो हम उसको और बेहतर क्या कर सकते हैं, तो ये सब एक बहुत ही डेटा मैकेनिज्म जो पूरा हमारा करने का है।
0: ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना विभाग में आज नो व्हीकल डे मनाया गया। शासन के निर्देशों के क्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पैदल कार्यालय पहुंचकर इस पहल में सहभागिता की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी खुद साइकिल से सूचना निदेशालय पहुंचे, वहीं अपर निदेशक सार्वजनिक परिवहन से दफ्तर पहुंचे। साथ ही अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइसाइकिल का उपयोग कर इस अभियान को सफल बनाया। सूचना महानिदेशक ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा विभाग द्वारा इस पहल को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पहली मई से शुरू हुई आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। मात्र

0: 16 दिन में ही 10,000 से अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आदि कैलाश यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है। विशेष रूप से होमस्टे, होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सीमांत क्षेत्रों में संचालित होमस्टे में इस वर्ष विशेष रौनक देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा अब केवल धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक विकास, स्वरोजगार और पर्यटन आधारित आजीविका का एक मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचने से सीमांत क्षेत्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आज वट सावित्री का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के दूरदराज क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष की पूजा अर्चना और पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। श्रद्धालु उमा गुरुरानी ने कहा कि वट वृक्ष की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है।
1: ये वट सावित्री का व्रत साल में एक बार आता है। ये सभी बहनें अपनी सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। ये व्रत बहुत अनिवार्य माना जाता है और साल भर में अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। इस दिन सारी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और माँ से विनती करती हूँ कि सभी बहनें हमारी जो भी हैं सदा सुहागिन रहें, सदा सौभाग्यवती रहें।
0: वहीं पंडित पूरन जोशी ने बताया कि वट सावित्री पर्व का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है।
2: पौराणिक कथा है सत्यवान सावित्री की, जिसमें सावित्री सत्यवान को दोबारा पुनर्जीवित कर देती है। उसी के लिए आज हम ये सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं और अखंड सौभाग्य की करता ये व्रत। जो भी सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा व्रत है।
0: उधर चंपावत और पिथौरागढ़ में भी सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिरों और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चंपावत जिला सेवायोजन कार्यालय में आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी की ओर से 900 रिक्तियों के लिए लगातार भर्ती मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती कंपनी के पंतनगर रुद्रपुर प्लांट में की जाएगी। जिला सेवायोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पंत ने बताया कि रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर पंतनगर में नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा।
3: रोजगार मेला आयोजित किया गया है, इसमें टाटा मोटर्स के लिए भर्ती की जा रही है और इसमें इंटरमीडिएट, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए रोजगार के अवसर हैं और बच्चे आज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ साक्षात्कार दे रहे हैं और साक्षात्कार के बाद अगले हफ्ते ही उनकी ज्वाइनिंग भी है।
0: रोजगार मेले में साक्षात्कार देने वाली सुमन और सूरज ने इसके लिए सरकार का आभार जताया।
4: यहाँ पे स्टार्टर मोटर्स से इंटरव्यू चल रहे हैं जिसमें मैं अभी देख के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सरकार की तरफ से पहल है जो अच्छी है, जो महिलाओं के लिए चल रही है और मेरे साथ और भी लड़कियों ने इंटरव्यू दिया है।
5: यहाँ रोजगार मेला है, इसके लिए मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूँ और उम्मीद है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती और चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप

अमेज़ॉन AIR पर। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं से थककर जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं तो प्रकृति भी एक शांत चादर ओढ़ने लगती है। ऐसे में मन को असीम शांति और सुकून देने के लिए समय हो चला है अब संध्या भजन का। तो आइए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनते हैं अनूप जलोटा का गाया भजन।

श्रोताओं, शाम का ये समय केवल दिन के ढलने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये समय है खुद को समेटने का, पूरे दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का और एक नई सुबह के स्वागत के लिए नई ऊर्जा संचित करने का। आइए संध्या भजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला भक्ति गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: इसी भक्ति गीत के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटकी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सविता बड़थवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि वैश्विक चुनौतियों का बीच भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था का रूप मां उभरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान से चेतावनी, बोली पाकिस्तान आतंकवादी

0: यूं थे पनाह देण और भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियों थे बंद कर। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 2% से बढ़की 60% करे गया, यू 1 जनवरी 2026 से लागू होलो। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश देनी। और गढ़वाल सांसद अनिल बनू ने पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं का त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि पहली कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जन चुनौतियों का कारण यू दशक दुनिया खुने की आपदाओं को दशक बन दो जानु। नीदरलैंड का हेंग में आयोजित कार्यक्रम थे संबोधित करदा उन बोली कि यूं परिस्थितियों में तेजी से सुधार नहीं होलु तो पिछला कई दशक की उपलब्धियां प्रभावित हो सकती ने और बड़ी आबादी थे फिर से गरीबी की तरफ धकेले जा सकत।
1: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान थे कड़ी चेतावनी देंदा बोली कि वे थे आतंकवादियों थे पनाह देण और भारत का खिलाफ गतिविधियां चलान बंद करण होला। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने बोली कि अगर पाकिस्तान भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रख लो तो वे से एक बड़ो फैसला लेण होलू। सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत का आतंकवाद का खिलाफ सख्त नीति थे दर्शादु। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों थे बड़ी राहत दींदा महंगाई भत्ता वृद्धि करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता की दर 58% से बढ़े की 60% प्रत्येक महीना करने को मंजूरी दिया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2000 से प्रभावी होली। ये कदगड़ी ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं खुने की लगभग 50 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करी। ये मां पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़िया काम शामिल छिन। स्वीकृति योजनाओं का अंतर्गत हल्द्वानी फायर स्टेशन मां आवास निर्माण, चंपावत जिला मां पुलिस आवास निर्माण, अल्मोड़ा और चमोली मां पार्किंग निर्माण कामों के मंजूरी दिया। राज्य मां श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए। देहरादून मां प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता मां आयोजित बैठक उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों का दगड़ी श्रमिक हितों तथा औद्योगिक शांति थे लेकर चर्चा करे गया। बैठक में श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों का अनुरूप उपलब्ध कराने पर जोर दिए गया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से निर्देश देने की सभी औद्योगिक संस्थान श्रम कानूनों को पालन पूरा करण सुनिश्चित कराया। श्रमिकों का दगड़ी सुनिश्चित नियमित संवाद बनाए रखा। उन संबंधित अधिकारियों से व्यापक स्क्रीनिंग दोबारा करण का निर्देश भी देनी ताकि यू सुनिश्चित किए जा सको कि श्रमिकों से निर्धारित मानकों का अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं मिलनी छिनी।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: गढ़वाल सांसद अनिल बनू ने आज पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाएं और विकास कामों की समीक्षा करी। उन अधिकारियों थे जनसभाओं का समाधान, योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से जुड़िया कामों थे प्राथमिकता देण का दगड़ी संचालित करण का भी निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि गर्मी का मौसम में पेयजल की कमी दूर करण और आने वाली बरसात का दौरान आपदा से निपटन खुणे की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करण पर जोर दिया।
3: आज हमारे पौड़ी जनपद की दिशा की बैठक

0: उसमें तमाम सभी विभागों के प्रमुख लोगों ने भागीदारी की है और सभी लोगों से जो पिछली बैठक थी उसके का फीडबैक भी लिया गया है, वो कामों पे कितनी प्रगति है उस बारे में पूछा गया है, साथ आने वाले समय के लिए क्या क्या तैयारियाँ उस पर भी चर्चा हुई है। पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, उस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही PWD को भी ऐसे जोन है जहाँ बरसात में आपदा के समय में जहाँ पर स्लाइड्स आते हैं उनके रख रखाव को किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करनी है, आपदा की तैयारी करने के लिए भी सबको निर्देश दिया गया।
1: बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष और बाघ का हमलों की घटनाओं पर भी चर्चा करी। सांसदन प्रभावित परिवारों थे त्वरित राहत उपलब्ध कराण का आवश्यक कार्रवाई में तेज लाण का निर्देश देनी। चारधाम यात्रा पूरा उत्सव और श्रद्धा का दगड़ी होनी चाहिए। चारधाम यात्रा का अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का दर्शन खुणे की श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ च। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता और कथावाचक देवी चित्रलेखानवे श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने दर्शन का बाद उन धाम मां करेंगे व्यवस्थाओं की सराहना करी।
2: राधे राधे, जय बद्री विशाल। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा ही है कि उनके चरणों तक कोई पहुँच पाता है और उस दर्शन के लिए माध्यम बनने के लिए यहाँ जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने खूब सेवा करी, सहयोग किया।
1: वकी चारधाम यात्रा थे लेके कुमाऊं मंडल में परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आने चु। यात्रियों की सुविधाओं ते ध्यान में रखदा व्यवसायिक गाड़ी खुने के ग्रीन कार्ड अनिवार्य करेगी ने। कुमाऊं संभाग का परिवहन अधिकारी गुरुदेव सिंह ने बताया कि रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और टनकपुर RTO कार्यालय में अब तक 498 ग्रीन कार्ड जारी करेगी ने। उन बताया कि कहीं भी गाड़ी थे यात्रा पर जाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करण अनिवार्य होली।
3: चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
1: प्रदेश में जनगणना को पहलु चरण को काम तेजी से अग्नि बढ़नु च। राज्य में मकानों की सूचीकरण और आवास जनगणना का लगभग 70% काम पूरा हो गया। अब तक जनगणना टीमों ने 19,00,000 घरों तक पहुंची की लगभग 46,00,000 लोगों को डाटा इकट्ठा करे ली। भारत में महा रजिस्टर और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणन, प्रमुख सचिव RK सुधांशु का दगड़ी वर्चुअल बैठक कर जनगणना कामों की समीक्षा करी। बैठक में जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से प्रगति की जानकारी भी ले। अधिकारियों ने बताया कि शेष 10 दिनों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने की संभावना च। बैठक में जनगणना आयुक्त ने बोली कि आंकड़ों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण च, किले की ये का आधार पर भविष्य की योजनाएं और परिसीमन तय होलू। उन सभी अधिकारियों थे डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने का निर्देश देने। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था का रूप में उभरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान से चेतावनी, बोले कि पाकिस्तान आतंकवादियों थे पनाह देन और भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियों थे बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 2% से बढ़की 60% करे गया, यू 1 जनवरी 2026 से लागू होलो। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश देने। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं का त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। ये कदगड़ी ही गढ़वाली में समाचारों के अंक समाप्त हों। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सब दगड़न के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार दगड़ियों हमर यो किसानवाणी कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों आज हम बात करने लाग रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में भट और गहोतक खेती पर में। दगड़ियों भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तराखंड हिमाचल तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में भट और गहोतक खेती प्राचीन बखत बड़ी करी जाने यो द्विवादी दलहनी फसल पौष्टिक होना साथ साथ किसानों की आय एक एक भल स्रोत लछ। पर्वतीय जलवायु और कम उपजाऊ भूमि में ये खेत सफलतापूर्वक करी जा सके। तो दगड़ियों पहली बात करनू भटे की। दगड़ियों भटके कल सोयाबीन ले कही जा यो पहाड़ी क्षेत्रों प्रमुख दलहनी फसल छ। भट में प्रोटीन कैल्शियम तथा आयरन भरपूर मात्रा में पाई जा। यह उपयोग दाल और तथा पारंपरिक व्यंजनों में करी जा। दगड़ियों भटे खेती के लीजिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त हूँ। भल जल निकास वाली दोमट माट यह लीजिए सबसे भल मानी जा। यह बुआई जून बटे जुलाई बीच बर्फ प्रारंभ होने पर करी जा। दगड़ियों उन्नत किस्म स्वस्थ बीजों प्रयोग हमन के करण चें और अपन खेत में गोबर सड़ी खाद तथा संतुलित उर्वरकों प्रयोग करण बटी उत्पादन एक बढ़ाओ। भटक फसल सामान्यतः तो वर्षा पर निर्भर हूँ। बखत बखत पर निराई गुड़ाई करणल खरपतवार नियंत्रण हूँ और पौधों वृद्धि ले भल हूँ। और अब बात करनो गहोतक खेती भर में। दगड़ियों गहत के कुलथी ले कही जहाँ जो पौष्टिक एवं औषधि गुणों वाली दलहनी फसल छे। गहतक दाल स्वास्थ्य लीजिए लाभकारी मानी जा तथा यह उपयोग पशुओं चारा रूप में ले करी जा। दगड़ियों गहोतक खेती सूखी और कम उपजाऊ क्षेत्रों में आसानी साथ करी जा सके। जो फसल कम पानी में भल उपज दी यह बुआई जून जुलाई में करी जा। बीजों के कतार में बुण पौधा विकास भल हूँ। गहोतक फसल में ज्यादा सिंचाई आवश्यकता निहुन बखत पर खरपतवार नियंत्रण तथा जैविक खाद उपयोग उत्पादन बोण में सहायक हूँ। अब दगड़ियों बात करनू भट और गहोतक खेती लाभावर में। दगड़ियों यो फसल पटक उर्वरता बढ़ोनी कम लागत में भल उपज प्राप्त हूँ। किसानों के अतिरिक्त आय प्राप्त हूँ। पौष्टिक आहारक रूप में इनर विशेष महत्व छ। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु में यो फसल आसानी साथ उगाई जा सकनी। तो दगड़ियों भट और गहोतक खेती पर्वतीय किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी छ। यो फसल पोषण स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण छन। आधुनिक कृषि तकनीकों तथा उन्नत बीजों प्रयोग यह उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भट और गहतक खेत के बढ़ावा दिन आवश्यक छ। तो यू तो छी आप लोगों दगड़ बातचीत और अब कार्यक्रम में अधिक सुन लो पहला सिंह मेहरा गई हुई शो लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और दगड़े अब कार्यक्रम है कि सुनो, कृषि में जैविक खादों उपयोग विषय पर कृषक विपिन चंद तिवारी दगड़ करीगे जो भेंट वार्ता भेंट करता छन कृष्ण सिंह लटवाल।

0: नमस्कार। पर्वतीय क्षेत्र न कृषक नगदी फसलों का उत्पादन कर भेर आज एक भल उत्पादन करण लग रही और यह का दगड़ दगड़े भल आय ले अर्जित करण लग रही। सुधाओं पर्वतीय क्षेत्रों में उसी तो परंपरागत रूप में जैविक खादों का प्रयोग करते आई जान लग रहो, लेकिन वर्तमान वक्त में हम बाजार मांग के देखूं तो रासायनिक खादों का प्रयोग यहाँ बहुतायत मात्रा में करी जान लग रहो। भारत सरकार उत्तराखंड सरकार ये निवेदन ला करने लग रहे कि अपने खेतन में अगर हम लंबे समय तक बखत तक अपने खेतों के संरक्षित करण चाहूँ और बहुत ज्यादा समय तक अगर हम उत्पादन लेन चाहूँ तो एक तरह जी हमन के जैविक खादों की तरफ बढ़न पड़ल और रासायनिक खादों कम उपयोग हमन के करण पड़ल। तो ये सरकार के निवेदन के कि हम जैविक खादक उत्पाद उपयोग अपन खेतन में ज्यादा से ज्यादा कर सकूँ और यश कृषक जो जैविक खादों का उपयोग कर भेर अपन आय के बढ़ो लाग रही उन्हर जगह हम बात करने लग रहे। आज हम स्टूडियो में एक ऐसे कृषक के आमंत्रित कर रहे जो जैविक खादों अपन खेतन में प्रयोग कर भेर नगदी फसलों का उत्पादन कर भेर भलाई अर्जित करने लग रही। आज हमारे स्टूडियो में रही श्रीमान विपिन चंद तिवारी जी, ग्राम सभा देवड़ी तो घुराड़ी पोस्ट लोधिया जिला अलमड़ भट्टी। सबन है पहले तो तिवारी जी स्वागत है अपन हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो अगर हम जैविक खादों की बात करूँ तो आप जैविक खादक के अभिप्राय समझा।
1: जैविक खादों मतलब यशु कि हम जमे की रासायनिक खादों कोई प्रयोग नहीं करूँ। जैसे हमारे परंपरागत रूपल चली हुई छू गोबरे खाद छू बकरों चुजूत छू और यो इस प्रकार वो जो खाद जो गोबर हूँ जानवरों को खड्डों में एकत्र कर बेर उमें उसको बंद कर बेर उसमें जो जो खाद बढ़ाई जाए उसे जैविक खाद कही जाए। उमें और घास पात झाड़ पात जो हमारे कूड़ कचार से जो जो चीज हमारे उपयोग में नहीं होने गुरबासले जगह नहीं खाने उकल हम उमें डाल सकनू वो बाद मलि बंद कर दी जो खूब टैंक बड़ा बड़ा टैंक को बढ़ाई जो छन जो पुरान पानी टैंक छन उनमें जब मैं पानी नहीं मान लियो खाली बर्बाद फे रही तो उनमें गोबर खाद के सब उमें डाल दी जो वो बाद को मलि छुप दी जो या केले प्लास्टिकल पॉलिथिनल छुप दी जो तो लब बहुत बढ़िया वो खाद बहुत दिव्य खाद है।
0: अगर हम एक जैविक खादक शुरुआत बतिक बात करूँ जो कसिक बढ़ाई जाए यह एक प्रक्रिया के पालन हमारे किसान भाई बहन के करण चाहिए।
1: हमारे घरों में जानवर हम लोग पाउन

0: छौँ और झाड़ पात हमारा घर में होने छू तो गोबर बछा ताओ बिछोने लीजिए हम बिछोने ला डालनो वो जो जो लोग गोबर हूँ पहली कति डाली जोल कबेर ये निश्चित करना पड़ा हमको एक जगह हमको बढ़ो पड़े ली उस जगह हमारे बढ़िया कबेर एक जाग बड़े बेर जैसे मैंने अल्लाह कहा कि पुराना टैंक यदि छना उ नहीं ला बढ़ा सकनों फर्स्ट क्लास दी तरफ तीन तरफ दीवार लगे तीन दीवार दी बेर और फर्स्ट क्लास मनी पे पैक कर बेर एक तरफ डालनी बढ़ा दी उमें और फिर जब वो सड़ जाए वो पाँच छः महीना अंदर पहले जल्दी सड़ जाए तो पाँच छः महीने या साल भरी जो जो पुराण हो साल भरी बाद यदि निकाऊ न तो वो जरा लौटून पड़ूँ गोबर के यदि हम दो महीने बाद फिर पलटा दे तो वो बात और जोरदार है जाऊँ फिर पैक कर दी फिर बहुत बारीक है जाऊँ तो वो कि मुँह में जो केमिकल वाला खाद से भी 10 गुण फैद हूँ
1: ये बताओ कि जो हम बात करने लग रहे हो कि आप कूड़ा कचरा से घर के जो जैविक अपशिष्ट हम कह सकन जगह जो हमारे घर खाना बड़न बखत में छिलके छन प्रयोग में न्यूनू नन के उमें डाल सक जा तो इमें एक निश्चित मात्रा में पानी डालन पड़ो तो वो कदू डालन चाहिए के अनुपात वह गुण चाहिए
0: उमें यश कि पानी मात्रा उसी यदि गोबर वाल छो तो उमें पानी मात्रा होनी छू तो यदि अवशिष्ट जस लायक हम डालने आए उमें लगभग लगभग 1% 2% पानी डालना चाहिए सकर पानी में फिर यदि लीकेज जाग होली तो तली हुई तली रिस जाल
1: थोड़ा सड़ने के लिए
0: सड़ने लायक पानी डालना फिर जाके ये सड़ जो ये वाली बात
1: तो अच्छा ये बताओ तिवारी जी कि अगर हम रासायनिक खादन की बात कर लूँ और जैविक खादनों की बात कर लूँ तो को पौधे जल्दी भल होने
0: तो जैविक तो अब वो तो प्राकृतिक रूप होनी चीज स्वयं सिद्ध है ना तो जैविक तो बहुत बढ़िया है पहली पहले ऐसे ऊँची तो फिर एक साल हम फूल गोभी लगे छू वो 5-5 किलो फूल गोभी होची एक हम नाना नानतीन छियाँ वो बत करे तो एक गोभ के 5 किलो 6 किलो इतर फूल बस देखनी लेकर हो चू बहुत जोरदार फूल है तो ऐसा आई है सब मुविल तो करनी चाहिए नहीं महाराज
1: बिल्कुल अच्छा जैविक खादनक बाद हम बात करूँ जैविक कीटनाशकों के लिए कि एक किसानक सबसे ज़्यादा जो लागत है वो कीटनाशकों में लगी तो ये कीटनाशकों की लागत के लिए कैसे कम करी जो एक जिले सरकार प्रयत्नशील छू और ये कौन लग रहा है कि हम उनके जैविक कीटनाशकों की तरफ बल्ले बढ़ना पड़ो तो अगर हम जैविक कीटनाशकों की बात करूँ तो ये कैसे बढ़ाई जा सकूँ
0: तो जैविक कीटनाशक ऐसी बढ़ाई जानी जो पौध के गोर निखान उमें वास्तव में उस जहरों तत्व हूँ जैसे कनेरो फूल हूँ जगह शिव जी को चढ़ू शिव जी को जो जो चढ़ाई जानी उमला कुछ जहर मात्रा है और जो चीज तो वो वनस्पति के हम टोड़ बेर लूनो उको को पैक कर बेर उको कूट उको कूट बेर कुछ समय गला बेर एक तो उस उबड़ जाए दूसर यशु जो छा है मट्ट हूँ पुरान
1: जी
0: तो उलपी में तामा भान में धर बेर कुछ टाइम उको धर दीजो तो वो बात यदि गुरु गोंद डाल बेर कुछ पौधों में छिड़की जो उला बहुत बड़ी हूँ पहली बेटी के हमारे घरों में गोंद डालची जो पेड़ में कि बीमारी लग गया पेड़ ऊँची उमें गोंद छिड़क ची गौतल बहुत आई लेवल बहुत भल होनी तो बीमारी स्वयं समाप्त है जे केमिकल या जहर कणी नहीं डालना चाहिए यदि स्प्रे कर चाहिए पहली बार हमला करो आज बेटी 25 साल पहली लगभग स्प्रे करो जैसे यो गदू हम लगनू लंबू वाल तो उमें अब उमें कीड़ लग जा तो वो कीड़ा लीजिए मैं 10-10 हज़ार दवाई उस टाइम में खरीदी मैं तो वो दवाई महाराज कुछ ला फायद नहीं है स्प्रे तो हम लोग करो हमारे ला नुकसान है मुखाम है हमारे ला शरीर में बिखेर गए और खैर हम जैसे बाजार में बेचना है पहली या ब्यावर टाइम में जब मोहन निमरन जैसी मधुमक्खी नितर मर जानी हुई उस हिसाब से करूँ करो लेकिन उस उमें फायद नहीं है कोई फायद नहीं है
1: तो आपको कौन अभिप्राय छू कि जो जैविक कीटनाशक हम बढ़ सकनू घर में गोमूत्र मट्ठा और जो फिर हमारे जो प्राकृतिक रूप में जनन में थोड़ा बहुत जहरक मात्रा है यश फूल कंद उनके मिश्रण कर फिर हम एक निश्चित अनुपात में अपने खेत जो पहुँच उनमें छिड़क सकते तो हमारे एक तो लागत ले बचे ले और दोहर हम उनके जो है सरकारक जो प्रयास छू कि कैसे हम कीटनाशकों का प्रयोग कम कर सकूँ उस तरफ वाला हम बढ़ सकूँ है ना। अच्छा आप वही हम जानें चाहूँ तिवारी जी कि अगर हम खेतक उत्पादन क्षमता की बात करूँ तो रासायनिक खादक के दुष्प्रभाव छन और जैविक खादक के प्रयोग फैद छन ये आप समझ श्रोताओं के बता सकता।
0: रासायनिक खाद में यह से एल हम एक वक्त डाल हलो चू हमेशा डालना पड़ू
1: जी
0: जैसे जो शरीर को दवाई खाने आदत पड़ गई बिना दवाई खाइए फिर वो शरीर भल नहीं हूँ उसे प्रकार हमारे खेतों में जो हम यूरिया डाले लो या DAP डाले लो बिना वो डालिए फिर फसल होनी
1: नहीं
0: उमें तो या तो उसको फिर जमा डाले लो उसको फिर खूब माट का लौटो पड़ो एक दीदी फुफुट खोद भी तल्यो बाट मली करो तब जब भी मैं है सकूँ बिना खाद और गोबर गोबर

0: अरे खाद डालो या जैविक खाद का डाली जालो में तब जब हो न तो फिर यही बात है। और शरीर लीजिए रहा स्वास्थ्य लीजिए रहा वो तो बढ़िया हानिकारक है पे आप है ना
1: ये तो आप बोले बहुत कम प्रयोग कर छा
0: कम हम नहीं के बराबर प्रयोग है जी।
1: अच्छा
0: अब जैविक का अधिक ध्यान देने आप बिल्कुल वही।
1: अच्छा तो जो जैविक में प्राप्त उत्पाद छू वह तो कीमत लाभ के भल मिली होने
0: कीमत तो कोई नहीं पहचाना है बाजारों में ऐसा कुछ कोई नहीं समझना उनको लिखित लिख भी दिन लेकिन जो सस्त हो आदि आदि मुँह को नहीं जा है ना।
1: अच्छा
0: स्थिति तो
1: ये कहना है ना कि ऑर्गेनिक
0: ऑर्गेनिक डबल तो भी भाल होने रुपये लेकिन फिर वो लोग नहीं समझने आई है ना जो उनको सस्ता मिला वो चमकदार मिला उसको ले जाते हैं और ऑर्गेनिक वाला कमी यहाँ की बात है और जगहों पर जहाँ अच्छे लोग जहाँ जति भल लोग समझदार से ना वो कोई ले जा नहीं।
1: अच्छा ऑर्गेनिक तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहे तो इसमें आप उगले फायदा और जो
0: सब हमारे
1: जो लागू सामान ले लाग रहा उगले फायदा
0: उपभोक्ता
1: एक तो अपन स्वास्थ्य के लिए फैद छू दोहर किसान के लिए भल कीमत जो छू
0: मिल जाए
1: तो कुल मिले हम ये कह सकनु कि जैविक खादनक जो प्रयोग है वो हमारे लिए संतुलित है और हमारे जो माटक उर्वरा शक्ति है उसके हम लंबे
0: हमेशा बढ़ा सकनू।
1: अच्छा तिवारी जी आप हैं चलते चलते एक चीज़ आई जानना चाहें कि हमारे जो श्रोता भाई बहनी जैविक खादनक प्रयोग करन चाहनी जैविक कीटनाशक प्रयोग करन चाहनी उन्होंने आपको आपके संदेश दिला थोड़ा धैर्य कशी को रख सकनी अपन उत्पादन में
0: केमिकल वाल जो जो, जो रासायनिक खाद छो न रासायनिक खादों को प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों जैविक खाद प्रयोग करना चाहिए ये वो चल कुछ समय तो हमारा निहल और जब मैं नहीं हूं वो माट का लौटा दियो यदि पहले कहला यदि पहली केमिकल डालना खींची हो रासायनिक खाद डाली हुई से ना माट का खुद बेर उल्ट कर दियो तल्य मली कर दियो वो बाद में गोबर खाद डालो यो तो विल बहुत बढ़िया उत्पादन हलो
1: जी। तो अपन को मतलब कि थोड़ा हम जो जैविक खाद प्रयोग करने लग रहे किसान भाई उनके थोड़ा धैर्य रखन पड़ल और थोड़ा यो छो कि उत्पादन है सको कम हो लेकिन एक हम अपन स्वास्थ्य के प्रति जो खिलवाड़ छे उन्हीं करो और एक नैतिकता के रूप में हम अगिल
0: बढ़
1: सकूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील छू कि जैविक खाद जैविक कीटनाशक प्रयोग करो उ दिशा में हम अगिल बढ़ सकूँ और निश्चित रूप में जब हमारे देश अगिल बढ़ल हमारे देश स्वस्थ रहल और हमारे किसानों को फायदा मिलल तो हमारे जो प्रगति है वो और ज़्यादा भल तरीके है सके। तो तिवारी जी आप हमारे दे बात करिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दगड़ी वाला आप लोग कृषि में जैविक खादों उपयोग विषय पर कृषक विपिन चंद तिवारी दगड़ करीगे जो भेंटवार्ता सुनी भेंट करता छी कृष्ण सिंह लटवाल।
3: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
4: छोटा किसान बने देश की शान।
3: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
2: और दगड़ियों आप कार्यक्रम आखिर में सुनो शैलजा मसीह गई हुई शो लोकगीत।

तो दगड़ी वाला आप लोग नल से मशी हो गई हुई यो लोग गी सुना और अब भगत को आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करना हमारे जो कार्यक्रम पे आयोजक चीज किसी एम किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एल में कहा गया दियो नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब हमारे देहरादून केंद्र से कुमावनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वैश्विक चुनौतियों के बीच मां भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप मां उभरनो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी को पाकिस्तान आतंकवादियों के पनाह दिन और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्त 2% बढ़े बेर 60% करीगो। यो 1 जनवरी 2026 बटेक लागू होल। प्रदेश सरकार श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाओं के टेमल और तरीकल उपलब्ध करुणक निर्देश दें। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं जल्द सुलटोणक जरूरत पे बल दे। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पहली कोविड महामारी वी बात युद्ध और अब ऊर्जा संकट जस चुनौतियों कारण यो दशक दुनिया के लिए आपदाओं दशक।

0: भत्त 2% बढ़े बेर 60% करीगो यो 1 जनवरी 2026 बटे लागू होल। प्रदेश सरकार श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाओं के टेमल और तरीकल उपलब्ध करने के निर्देश दें। और गढ़वाल सांसद अनिल बलू ने पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं जल्द सुलटाने की जरूरत पे बल दे। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पहली कोविड महामारी वी बात युद्ध और अब ऊर्जा संकट जस चुनौतियों कारण यो दशक दुनिया अगली जी आपदाओं दशक बढ़ते जनो। नीदरलैंड के हेग में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करते हुए उन्होंने को कि यो परिस्थितियों में तेजी सुधार नहीं होल तब तलक बीती कई दशकों की उपलब्धि प्रभावित है सकूं और ठूल आबादी गरीबी ओर ले जा सकूं।
1: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी देते हुए कहो कि उके आतंकवादियों के पनाह देन और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के चलून बंद करण हल। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी कहो कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां करते रहल तो एक ठुल फैसल लेना पड़ल। सेना प्रमुख हल यो टिप्पणी भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति के लिए दर्शू। राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के ठुल राहत देते हुए महंगाई भत्ता में वृद्धि करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील केंद्र सरकार तर्ज पर महंगाई भत्ता दर 58% है बढ़े बेर 60% प्रतिमाह करणक मंजूरी देहली। यो बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 बटे प्रभावी होली। यह कदगढ़ ही मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जी लगभग 50 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति ले प्रदान करी। यमे पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़ी काम शामिल छन। स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत हल्द्वानी फायर स्टेशन में आवास निर्माण, चंपावत जिले में पुलिस आवास निर्माण और यैकदगढ़ अलमड़ चमोली में पार्किंग निर्माण के लिए मंजूरी दी गई छू। राज्य में श्रमिकों न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाओं का टैम पर और पारदर्शी तरीकल उपलब्ध करने के निर्देश दें। देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों दगड़ श्रमिक हितों और औद्योगिक शांति के लिबेर चर्चा करी गई। बैठक में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और सुविधाओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करूण पर ले जोर दी गो। प्रमुख सचिव अधिकारियों के निर्देश दें कि सभ्य औद्योगिक संस्थान श्रम कानून पूर्व पालन सुनिश्चित करो और श्रमिकों के दगड़ नियमित संवाद बढ़ाई जाओ। उन्हें संबंधित अधिकारियों के व्यापक स्क्रीनिंग दोबारा करने के लिए निर्देश दें। जैक वजल यह सुनिश्चित करी जा सकल कि श्रमिकों के निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन और अन्य सुविधा मिलने की नहीं मिलने। यो समाचार आप लोग यो बखत आकाशवाणी देहरादून बटिक सुनो छा। गढ़वाल सांसद अनिल बलू ने आज पौड़ी विकास भवन सभागार में आयोजित दिशा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कामनक समीक्षा करी। उन्होंने अधिकारियों के जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़ी कामनक के प्राथमिकता दगर संचालित करनक निर्देश दें। सांसद अलबता कि गर्मी के मौसम में पेयजल कमी के दूर करनक और ऊण वाल बरखा ऋतु दौरान आपदा है निपटनक लीजिए जरूरी तैयारियों पूर्ण करने पहले जोर दी गो।
2: आज हमारे पौड़ी जनपद की दिशा की बैठक हुई है, उसमें तमाम सभी विभागों के प्रमुख लोगों ने भागीदारी की है और सभी लोगों से जो पिछली बैठक थी उसके का फीडबैक भी लिया गया है, वो कामों पे कितनी प्रगति है उस बारे में पूछा गया है। साथ आने वाले

0: समय के लिए क्या क्या तैयारियां उस पर भी चर्चा हुई है। पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, उस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी ऐसे जोन है जहां बरसात में आपदा के समय में जहां पर स्लाइड्स आते हैं उनके रख रखाव को किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करनी है, आपदा की तैयारी करने के लिए भी सबको निर्देश दिया गया।
1: बैठक में वन्यजीव संघर्ष और गुलदारक हमलों घटना पर ले चर्चा करी गई। सांसद दल प्रभावित परिवारों के त्वरित राहत दिणक और जरूरी कार्रवाई में तेजी लूणक ले निर्देश दें। चारधाम यात्रा पुरोत्साहक और श्रद्धागदगर चलने। चारधाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण दर्शनक लीजिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़नो। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता और कथावाचक देवी चित्रलेखा ले श्री बद्रीनाथ धामक दर्शन करी, दर्शन बाद उन्हें धाम में करी गई व्यवस्थाओं के लिए सराहना करी।
2: राधे राधे, जय बद्री विशाल। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा ही है कि उनके चरणों तक कोई पहुंच पाता है, और उस दर्शन के लिए माध्यम बनने के लिए यहाँ जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने खूब सेवा करी, सहयोग किया।
1: दूहर तरफ चारधाम यात्रा के लिए बेर कुमाऊं मंडल परिवहन विभाग ले सतर्क नजर उन्हें यात्रियों सुरक्षा के ध्यान में धरते हुए व्यवसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य करी गई छू। कुमाऊं संभागक परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंहल बता कि रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वान और टनकपुर आरटीओ कार्यालय बटेक अब तक 498 ग्रीन कार्ड जारी करी गई छन। उन्होंने बताया कि कै प्रकारक ले वाहन के यात्रा पर जान है पहली निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करण जरूरी होल।
3: चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात तो ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
1: प्रदेश में जनगणना पहली चरण काम तेजी है अखिल बढ़नो। राज्य में मकानों की सूची और आवास जनगणना लगभग 70% काम पूर कर ली गई छू। अब तलक जनगणना टीमों 29 लाख घरों तलक कुछ बेर लगभग 86 लाख लोग नक डेटा जम कर हेलो। भारतक महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणर, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु दगर वर्चुअल बैठक कर जनगणना कार्य समीक्षा करी। बैठक में जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों दे प्रगति जानकारी ले ली गई। अधिकारियों और बताया कि बची 10 दिन में निर्धारित लक्ष्य के लिए पूर्णक संभावना छू। बैठक में जनगणना आयुक्त को कि आंकड़ों गुणवत्ता सब है महत्वपूर्ण छू, एक वजल भविष्य की योजनाओं और परिसीमन तय होल। उन्हें सभ्य अधिकारियों के डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के निर्देश दें। कुमाऊं प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए देश भर बटिक ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पिथौरगढ़ पुज नहीं। मात्र 16 दिन में ही 10,000 है अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश और ओम पर्वत तक दर्शन कर चुकी छन। आदि कैलाश यात्रा दे स्थानीय व्यवस्था के लिए मजबूती मिलल। विशेष रूपल होम स्टे, होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और परिवहन सेवाओं से जुड़ी लोगन के यो सिद्ध फैद मिलल। सीमांत क्षेत्रों में संचालित होम स्टे में यो बरस विशेष रौनक देखण हु मिलने। जैक विजल स्थानीय लोगनक आय में उल्लेखनीय वृद्धि ले हुने। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा अब केवल धार्मिक आस्था केंद्र नहीं थी बल्कि सीमांत क्षेत्रों का आर्थिक विकास, स्वरोजगार और पर्यटन आधारित आजीविका के लिए मजबूत माध्यम बनने। सरकार योजना का लाभ अंतिम छोर तलक पुजनक वजल सीमांत क्षेत्र विकास और आत्मनिर्भरता दिशा में ले अखिल वर्णो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तक मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था रूप में उभरनो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी को कि पाकिस्तान आतंकवादियों के पनाह दिन और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते 2% बढ़े वे 60% करीगो। यो 1 जनवरी 2026 बटिक लागू होल। प्रदेश सरकार और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाओं के टैम और तरीकल उपलब्ध करने का निर्देश दें। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी में आयोजित

0: दिशा बैठक में जन समस्याओं जल्द सुलटौणक आवश्यकता पर जोर दे। यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यहीं समाप्त हूं। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:41 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत।

दम लगा के हईशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। वरुण ग्रोवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्द रचना कुंवर जुनेजा की है और संगीत निर्देशन किया है अहमद अनीश ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, दबंग 3 फिल्म से सलमान अली और मुस्कान की आवाजों में। समीर अंजान और साजिद के लिखे गीत को संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम के समापन में आइए अब आपको सुनवाते हैं शेरशाह फिल्म का गीत, जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज़ों में। गीत और संगीत तनिष्क बागची का है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए आप पेश कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए सलमा आगा की गई नज़्म।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और आइए अब सुनते हैं सपना अवस्थी का गाया गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं शोभा मुद्गल का गाया गीत।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशियाई जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को

0: दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफर है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है, एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
2: जी बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पर दूसरे, पहला गेम तो
1: बराबरी का रहा, काफी
2: 21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूं कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के एक दो वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोड़ी दोड़ी पर, हाँ, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर वन जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इशू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं इस बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफी अनुभव है, और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, बट ओवरऑल जिस लय में दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी इस साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने एक रजत और दो कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
0: सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश ने पुरुषों के 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावनाएं इस खिलाड़ी में नजर आती हैं, जो कि स्प्रिंटर, अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
2: देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है।

0: तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है, अब हमें इंतजार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100
1: जी
0: मीटर
1: बिल्कुल
0: दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है, और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पे ये उभर रहे हैं। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है।
1: जी।
0: और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है, हंड्रेड
1: जी
0: मीटर टू
1: बिल्कुल
0: हंड्रेड मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
1: जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में
0: बिल्कुल
1: बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने T20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
2: अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
2: भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
1: हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स। नो डाउट वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
0: हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, जाहिर तौर पे ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से, 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहाँ से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं, और उन्होंने सही कहा कि उनकी देख रेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस
1: जी
0: टीम
1: बिल्कुल
0: के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहाँ बहुत कम लोग हैं,
1: जी
0: बाहर से जो जाके लोग वहाँ बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहाँ के भी लोकल अब खेलने लगे हैं, और फाइट देती है वो टीम।
1: जी
0: तो इसकी चर्चा उन्होंने की, और जाहिर तौर पर उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स को।
1: जी बिल्कुल। और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब IPL की भी कर लेते हैं, जहां कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
3: प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। LSG के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने LSG ने बेहद आसान बना दिया, और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद CSK अंक

0: तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ छठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की राह थोड़ी मुश्किल कर दी।
2: हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो अब बाकी के दो मैच बचे हैं, तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफी रोमांचक हो चला है, गुजरात और केकेआर के बीच।
1: जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
2: बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी दो मैचेस बाकी हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो गुजरात की नजर होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे में अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15 ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं। बट ओवरऑल जो अब ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि एक महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहाँ मैच हुआ था तकरीबन उसके एक महीने बाद यहाँ पर मैच चल रहा है और एक वहाँ जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पे आप कम नहीं आ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले

0: कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इंद्रधनुष के रंग जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही खूबसूरत होती हैं हमारी यादें। और जब बात यादों की हो तो पुराना संगीत हमारे दिल के सबसे करीब होता है। आज के इस सुहाने सफ़र की शुरुआत हम एक ऐसी ही मखमली और रूहानी आवाज़ से करने जा रहे हैं जो सीधे दिल के जख्मों पर मरहम लगा देती है। आइए सुनते हैं शगुन फिल्म का गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है खयाम ने।

शुरुआत हुई थी फिल्म शगुन के रूहानी नगमे से और अब वक्त हो चला है इंद्रधनुष के कैनवास पर एक ऐसा रंग बिखेरने का जो कभी फीका नहीं पड़ता। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ गीत कहना नाइंसाफी होगा, वो असल में एक इबादत बन जाते हैं। फिल्म वो कौन थी का लाजवाब गीत मदन मोहन साहब के संगीत और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में मिलकर जो जादू बुना उसकी गूंज आज आधी सदी के बाद भी वैसी ही ताज़ा है। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली साहब ने।

लता जी की आवाज़ का वो जादू अब भी हवाओं में तैर रहा है, लेकिन श्रोताओं, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है इंद्रधनुष के इन खूबसूरत रंगों को समेटने की। पता ही नहीं चला कब बातों बातों में और इन खूबसूरत गीतों के साए में आज की ये शाम गुजर गई। जिंदगी में हर रिश्ता सीधा और मुकम्मल नहीं होता। कभी कभी रिश्तों में एक अजीब सा मोड़ आ जाता है, जहां सामने वाला तो अपनी तरफ से सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन हम कभी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आइए समापन में सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है खयाम ने।

आज की महफिल को विदा कहने के लिए इस जज्बात से बेहतर और क्या हो सकता था। तो श्रोताओं, अब आपसे विदा लेते हैं इंद्रधनुष के कुछ और नए जज्बातों और रंगों के साथ। आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों की वफा की कद्र कीजिएगा। शुभ रात्रि, शुभ खैर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन

घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में

पुष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुमकुम। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली

चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी। रही।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरव

0: प्रभावशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी।

0: मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मौत चाहिए।
1: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
0: क्यों नहीं की जाएगी?
1: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
2: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती हैं जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा, अपनी माँ को खरीद सके।
2: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
2: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
6: तो

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल तारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।
4: जाने।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: ओहो,
3: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
2: जी जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।
1: नयन हमारे सांझ सकारे देखे लाखों सपने, सच्ची ये कहीं होंगे या नहीं।
3: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
2: बहुत अच्छी बात है।
3: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष।

0: एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of top grade artist by the government of India at the age of just 32.

0: Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश होगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: That was राग दुर्गा। Now you will listen to राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: दैट वॉज राग अभोगी। विद दैट we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते

0: और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow.